शुभ प्रभात दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिव्य दर्शन के भजनों के इस प्रोग्राम में। भजन क्यों किए जाते हैं, यूं तो सभी को इस बारे में पता है, लेकिन फिर भी भजन करने से जो मन की शांति हमें मिलती है, स्वास्थ्य लाभ हमें मिलता है, सुबह सुबह जो हमारे चित्त को, हमारे स्वभाव को, हमारे सोचने की शक्ति को प्रबल कर देता है, अच्छा बना देता है, सुख से भर देता है, उसी को भजन कहते हैं दोस्तों। तो आइए सुनते हैं दिव्य दर्शन के ये भजन।

हेलो दोस्तों, आज कैसे हैं आप? जिंदगी को जीने के तीन नियम। नियम नंबर एक, अपने दुख में खुद को अकेला समझना, केवल अपने दर्द के बारे में सोचना दुख को और बढ़ा देता है। भाई, हम दूसरों के प्यार और दर्द को समझ ही नहीं पाते। जितना हम प्यार करते हैं उतना खोते जाते हैं, लेकिन जितना खोते हैं उतना सीखते भी जाते हैं। जितना सीखते हैं उतना और प्यार करते हैं। यह सब एक पूरा चक्र है, जीवन पाठशाला है और प्यार उसका सबक। हम कुछ भी नहीं खोते, पाते ही पाते हैं। नियम नंबर दो, हम सबको अपने पैमानों पर समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। हम हर चीज समझ लेना चाहते हैं, भले ही हमारी मंशा गलत ना हो, लेकिन दूसरों को लगातार अपने जैसा बनाने की कोशिश में हम दरअसल उन्हें चोट पहुंचा देते हैं। लोग हमसे दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि सब कुछ समझने की कोशिश ना करें, छोड़ दें। कई बार समझने से ज्यादा जरूरी दूसरों को अपनाना हो जाता है, वो जैसे भी हों। नियम नंबर तीन, हम तन का इलाज करते हैं लेकिन मन के घावों को तो छोड़ ही देते हैं। समय के साथ गहरे होते हुए घाव तन की पीड़ा को और बढ़ा देते हैं। हम अपने भीतर की आवाजों को अनदेखी नहीं कर सकते। हमें अपने भावों को सही दिशा देनी होगी, उन्हें ढंग से पचाने की जरूरत है। हम अपनी समस्याओं को नहीं, अपनी सोच को ठीक कर सकते हैं। इस तरह हमारी समस्याएं भी अपने आप ठीक हो जाएंगी। फिर मिलते हैं दोस्तों। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: मैं हर रोज गुनाह करता हूं, तू हर रोज माफ कर देता है। मैं आदत से मजबूर हूं, तू रहमत से मशहूर है।
1: आइए दोस्तों, एक बड़ी मजेदार चीज बताता हूं। एक पंडित जी खाने पीने के बहुत शौकीन थे और उन्हें पुआ बहुत अच्छा लगता था। एक बार की बात है, पंडित जी को दूसरे गांव में पूजा करने के लिए जाना था, इसलिए उन्होंने अपनी भाषा में पंडिताइन से कहा, हम दूसर गांव जा रहे हैं पूजा करने के लिए, शाम तक लौटबे, और कुछ जरूरत पड़तो तो अपने पड़ोसी से मांग लियो। पंडिताइन अपनी भाषा में बोली, तो निश्चिंत रहो पंडित जी, हमें ठीक से रहवे, और कुछ और चीज की जरूरत पड़ते तो हम पड़ोसी से मंगवा लेवे। पंडित जी दूसरे गांव चले गए। वहां तो यजमान ने पंडित जी का खूब सत्कार किया, तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाए, जिसमें पंडित जी तो दूध का पुआ बहुत अच्छा लगा। पंडित जी यजमान से विदा लेकर अपने घर को चल पड़े। तभी बहुत तेज बारिश हो गई। यजमान ने पंडित जी से कहा, पंडित जी आज रात यहीं रुक जाइए। पंडित जी यजमान की बात मानकर रुक गए और एक खटिया पर सोने चले गए। सोते सोते सोचने लगे कि पुए का स्वाद कितना अच्छा था, कल सुबह घर जाएंगे तो पंडिताइन से कहेंगे, हमरा दूध पुआ खाने का बहुत मन हो रहा है, हमरा लिए दूध पुआ बना दो। फिर पंडित जी सोचने लगे कि हमें भूलने की बहुत आदत है, ऐसा करते हैं हम रट लेते हैं, तभी हम घर जाकर पंडिताइन को बनाने के लिए कह पाएंगे। पंडित जी रटते रटते सो गए। सुबह जैसे ही वो घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, वैसे ही वो भूल गए कि उन्हें पंडिताइन को क्या बनाने के लिए कहना था, कौन सा पकवान उन्हें खाने में अच्छा लगा था। पंडित जी रटे हुए शब्द तो भूल चुके थे। इधर पंडिताइन पंडित को देखते ही बहुत ही खुश हुई और अपनी भाषा में बोली, आ गए लो पंडित जी। पंडित जी पंडिताइन की बातों को सुनकर हामी भर के चुप रह गए। फिर पंडिताइन बोली, यजमान के घर की खेलो, यजमान की खिलाल खूं। पंडित जी को तो याद नहीं था हमको बोलना कौन सा शब्द है, वो तो भूल ही गए थे ना। वे पंडिताइन से सिर्फ इतना बोलकर चुप रह गए, हमें ऊ चीज खिला दो, हमारा ऊ चीज बना दो, हमारा ऊ चीज खाने का मन कर रहा है।
2: दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

सदियों पुरानी बात है। चीन के थिंगजा इलाके के एक राजकुमार की सम्राट के रूप में ताजपोशी होनी थी, लेकिन कानून के मुताबिक उसे इसके लिए पहले शादी करनी थी। एक अक्लमंद मंत्री की सलाह पर उसने प्रांत की विवाह योग्य युवतियों को बुलाकर उनमें से सबसे उपयुक्त को चुनने का निर्णय लिया। राजकुमार के महल में एक बूढ़ी महिला वर्षों से नौकरी कर रही थी। उसकी बेटी भी राजकुमार से मनी मन बड़ा प्रेम करती थी। घर पहुंचकर जब नौकरानी ने राजकुमार की योजना का समाचार बताया तो वो ये जानकर चौंक गई कि उसकी बेटी भी कन्या चयन प्रतियोगिता में शामिल होने का इरादा रखती थी। उसने बेटी से कहा, मेरी बच्ची, दरबार में सब सुंदर और धनाढ्य परिवार की बेटियां होंगी, तुम वहां क्या करने जा रही हो, तुमको तकलीफ होगी। बेटी ने मां को जवाब दिया, मां, मुझे पता है कि मुझको कभी भी चुना नहीं जाएगा, पर मुझे राजकुमार के करीब रहने के लिए कुछ और पल मिल जाएंगे ना, मैं बस इसी में खुश हूं। रात में जब बूढ़ी नौकरानी की बेटी महल पहुंची तो वहां रेशमी कपड़ों और गहनों में सजी धजी तमाम युवतियां इकट्ठी थीं। दरबारियों से घिरे हुए राजकुमार ने घोषणा की कि मैं आप में से प्रत्येक को एक बीज दूंगा, जो युवती 6 महीने में मेरे लिए सबसे सुंदर फूल लाएगी वही चीन की भावी महारानी होगी। उस लड़की ने भी अपना बीज लिया और घर चली आई। उसने बीज को एक फूलदान में लगाया। वो बागवानी ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन बड़े धैर्य और कोमलता से उसने फूलदान की मिट्टी की देखभाल की। उसने सोचा कि अगर फूलों की सुंदरता उसके प्यार जितनी गहरी होती है तो उसे परिणाम के बारे में चिंता करने की भला क्या जरूरत है। मगर कुछ नहीं हुआ। उस युवती ने कई मालियों से सलाह ली, लेकिन सारे के सारे प्रयास बेकार हो गए। 6 महीने हो गए, गुलदान में कुछ भी नहीं निकला। ये जानते हुए कि उसके पास दिखाने को कुछ भी नहीं है, उस युवती ने यह सोचकर महल जाने का फैसला किया कि प्रेमी के दीदार का ही एक मौका ले लूं। महल पहुंचकर उसने देखा, सबके हाथों में गुलदान में एक से बढ़कर एक फूल थे। आखिरकार वो पल आया जब राजकुमार ने सभी फूलों को देखा और आखिरकार नौकरानी की बेटी की ओर इशारा करते हुए उसे अपनी पत्नी बनाने का ऐलान कर दिया। वहां मौजूद लोगों ने शिकायतें की कि जो एक लड़की इस परीक्षा में नाकाम रही, आपने उसे ही चुन लिया। तब राजकुमार ने बहुत शांति से जवाब दिया, आप सभी में से एकमात्र यही है जिसने उस फूल को विकसित किया, जिसने उसे महारानी बनने के लिए योग्य बनाया। यह है ईमानदारी का फूल, क्योंकि आपको बांटे गए सारे बीज बांझ थे। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

एक बार कुछ जिज्ञासुओं ने क्वेश्चन किया, प्रश्न किया कि मनुष्य डेवलपमेंट क्यों चाहता है, विकास क्यों चाहता है, उसे पाने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। दरअसल विकास यानी कि डेवलपमेंट नेचर यानी कि प्रकृति का एक शाश्वत नियम है, होके रहेगा आप करें या ना करें। सृष्टि में सब कुछ गतिमान है, चलता ही रहता है। मनुष्य सृष्टि का ही एक अंग है और विकास करना, आगे बढ़ना उसका मौलिक लक्षण है। मनुष्य को यह पता है कि जब तक वो परिश्रम नहीं करेगा विकास पथ पर आगे बढ़ ही नहीं सकता। विकास का पथ चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक, इसके पीछे का उद्देश्य व्यक्तिगत जीवन में सुख भोग की चाहत ही होती है। क्योंकि मनुष्य की सोच बहुत बड़ी है, इसलिए सिर्फ वो अपने लिए सुख समेटना उसका मौलिक गुण धर्म नहीं होता। उस सामाजिक जीवन को भी वो सुख पहुंचाना चाहता है जिसे वो भोग रहा है। विवेकशील प्राणी होने के कारण वो अच्छे बुरे के बारे में सही निर्णय ले सकता है। जब वो सही निर्णय लेने लगता है तब आध्यात्मिक महत्व को भी समझने लगता है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग का सहारा लेने के लिए उसे सुबह शाम साधना करनी पड़ती है। इसी साधना की बदौलत मनुष्यों में व्यक्तिगत मानसिक विकास और विश्व बंधुत्व की भावना कायम होगी। यहां एक और बात बहुत जरूरी है दोस्तों, आध्यात्मिकता के साथ मनुष्य को भौतिक और मानसिक जगत से भी संतुलन बनाकर रखना होगा। मनुष्य में वृहत्त को पाने की आकांक्षा है, इसे बड़ा देखने की इच्छा भी कह सकते हैं, इसे बड़ा बनने की इच्छा भी कह सकते हैं। अगर उसमें यह आकांक्षा न होती तो ब्रह्म समुद्र में रहकर भी वो पर ब्रह्म को पहचानने का प्रयास न करता और हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाता। विराट को पाने का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति है। व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं कि एक कार का मालिक 5 कारों का मालिक बनना चाहता है, करोड़पति अरबपति बनना चाहता है, मगर माने या ना माने सीमित संपत्ति को सभी मनुष्यों को संयुक्त संपत्ति के रूप में ग्रहण करना होगा। सीमित वस्तुओं की प्राप्ति के पीछे दौड़ दौड़ कर धक्के खा खा कर मनुष्य ने एक दिन ये सच तो खोज ही निकाला था कि सच में उसका मन ऐसा कुछ पाना चाहता है जो जीवन भर के लिए बस मिल जाए। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

शायद मेरे पास सब कुछ नहीं, पर ईश्वर ने मुझे वो सब दिया है जिसकी मुझे जरूरत है। मैं इसके लिए ईश्वर का आभारी हूं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? जिंदगी को जीने के तीन नियम। पहला नियम, दूसरों के कहे और किए से हमें ठेस तो पहुंचती है ना, लेकिन हम दूसरों के बर्ताव की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। लेकिन अपने घावों को हमें ही ठीक करना पड़ेगा। हम खुद को बिखरा हुआ छोड़ भी नहीं सकते, और फिर दुख देने वालों से राहत की उम्मीद करना तो फजूल ही है। जिंदगी आसान हो जाती है जब हम उन गलतियों को माफ करना सीख जाते हैं जिनकी माफी हमसे मांगी ही नहीं गई है। माफ कर दीजिए। नियम नंबर दो, विश्वास दो लोगों के बीच खुला, स्पष्ट और ईमानदारी पर टिका हुआ एक रिश्ता है। जिन्हें हम प्यार करते हैं उनके सामने भावनाओं का छुपन छुपाई नहीं खेली जाती। बात कुछ समय के लिए भले ही बुरी लगे, पर हम उनके सामने सच बोलने से कतराते तो देखिए नहीं है। हम में इतना साहस होना चाहिए कि हम अपने प्यारे लोगों को एक बार और भरोसा करें और हर बार और भरोसा करें। नियम नंबर तीन, फैसले हमारे जीवन पर बड़ा असर डालते हैं। हमारे फैसलों के आगे जाकर क्या नतीजे होंगे, हम इसका पूरा आकलन कर नहीं पाते, लेकिन हमारा हर फैसला हमारी निष्ठा और आत्मविश्वास को बतलाता है कि हम कॉन्फिडेंट हैं। कुछ ही फैसले

0: ऐसे होते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। ज्यादातर हम कभी भी सुधार कर सकते हैं। हमारे जीवन में फैसले लेने और उन पर काम करने की प्रक्रिया प्रोसेस चलती ही रहनी चाहिए। फिर मिलते हैं दोस्तों।
1: दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: सन 1884 की बात है। कलकत्ता में उन दिनों चैतन्य लीला नाटक की धूम मची हुई थी। बड़ी संख्या में लोग वो नाटक देखने जा रहे थे और उसकी काफी प्रशंसा भी कर रहे थे। कुछ भक्तजन स्वामी रामकृष्ण परमहंस को महान भक्त चैतन्य महाप्रभु के जीवन पर आधारित इस नाटक को दिखाने के लिए नाट्य गृह में ले गए। विनोदिनी दासी नामक नगरवधु ने चैतन्य लीला में सजीव अभिनय किया। स्वामी रामकृष्ण उसके अभक्तिपूर्ण अभिनय को देखकर अभिभूत हो उठे। उनकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। नाटक की समाप्ति के बाद जब विनोदिनी ने दर्शक दीर्घा में स्वामी रामकृष्ण को बैठे देखा तो वो भागी भागी उनके पास पहुंची और उन्हें प्रणाम करके गदगद हो गई। स्वामी जी ने उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी तुम्हारा अभिनय बहुत प्रभावी है, जीवन उसी के अनुरूप ढालो तो कल्याण हो जाएगा। विनोदिनी दासी एक महान सिद्ध संत के आशीर्वाद स्पर्श से सुदबुद्ध खो बैठी। उसका जीवन बदल गया। जीवन पर्यंत वो भक्ति और साधना में लगी रही।
1: दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।
2: हम भगवान से ये प्रार्थना करें कि हमारे ऊपर कोई खतरा ना आए, बल्कि उनका सामना करने की हिम्मत हमारे अंदर आए।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वही जिंदगी को जीने के तीन नियम। नियम नंबर एक, हर बड़ी चीज किसी न किसी विचार और सपने से शुरू होती है, जिसे हम फिर धीरे धीरे आकार देने लगते हैं। ये बात जीवन में अपने गोल को जानने और पहचानने का ये तरीका भी है। अब आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ये भाषण देंगे कि हवाओं में महल ना बनाया करो, ये सब बेकार की बातें हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। अब किसी समझदार व्यक्ति ने कहा, किसी को यह कहने की इजाजत बिल्कुल ना दें कि दिन में सपने देखना समय की बर्बादी है। ये वो लोग हैं जिनका अपना कोई सपना नहीं होता। नियम नंबर दो, खुशियों का पीछा करने की दौड़ में हम उन बातों की अनदेखी कर देते हैं जो दरअसल खुशी देने वाली होती हैं। सोचिए ना, खुशियों के लिए बहुत कोशिश करनी नहीं पड़ती। थोड़ा सा धैर्य रखिए और काम करते रहिए, खुशी खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी। समझदार व्यक्ति बोले, खुशी एक तितली की तरह होती है जिनका हम पीछा करते हैं, वो हमें उतना ही दौड़ाती रहती है। ध्यान दें, लेकिन जब आपका ध्यान कहीं और हो जाता है तो खुद कंधे पर आकर बैठ जाती है। नियम नंबर तीन, प्रेम और डर दुनिया के सबसे मजबूत भाव हैं। प्यार हमें इस दुनिया में लाता है और उसी के भरोसे हम जीवन यात्रा चलाते रहते हैं। जहां प्यार है वहां खुशी होगी, आशाएं होंगी, माफी होगी। प्यार हमारी गलत सोच को भी दूर कर देता है। प्यार में डर के लिए जगह नहीं होती। प्यार भरोसा देता है जो हमें बेहतर बनाता है। समझदार व्यक्ति कहते हैं, जब जिंदगी का मकसद प्यार हो तब हर शक, दुख और डर बेकार हो जाते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

तो चलिए दोस्तों, इन्हीं भजनों के साथ हम सभी का दिन शुभ हो, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा। आज के सुखदायक दिन के बाद कल सुबह मैं फिर प्रभु के नाम के साथ, प्रभु के भजनों के साथ हाजिर हो जाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप हैं आप ही के झाबुआ की आवाज रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो, बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे तनुषा और आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की। और आज हम कोई सीरियस बात नहीं करेंगे, ना कोई लेक्चर देंगे, ना किसी जीवन की फिलॉसफी को डिस्कस करेंगे, ना कोई किताबों की बात करेंगे, ना कोई भारी भरकम साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। बट आज हम खोलेंगे एक मिठाई का डब्बा। जी हाँ, मिठाई का डब्बा। लेकिन जरा रुक जाइए, इस डब्बे में रसगुल्ला, जलेबी, गुलाब जामुन रैंडमली नहीं मिलेंगे कि जहां हाथ मारा उठा लिया। जी, आज की मिठाई की एक राशि होगी, और आपको तो पता ही है मुझे राशियों के बारे में बात करना कितना पसंद है। हर सीजन में, रिकॉर्ड से हर सीजन में एक ना एक स्टोरी जरूर जोडियक्स के ऊपर होती है, और जो मेरे रेगुलर लिसनर्स हैं उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है। तो चलिए आज का सवाल, अगर आपकी जोडियक साइन कोई एक इंडियन मिठाई होती तो वो कौन सी होती? और सबसे मजेदार बात, हो सकता है आपको अपनी राशि की मिठाई पसंद आए, और हो सकता है आप बोलें, तनुषा जी ये मिठाई तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ये मेरी कैसे हो सकती है? तो चलिए पहले डब्बा तो खोलते हैं। शुरू करते हैं मेष राशि के साथ। मेष राशि को बनाते हैं हम जलेबी। सीधी लाइन? बिल्कुल नहीं। जलेबी की तरह मेष राशि भी सीधे रास्ते से ज्यादा अपना शॉर्टकट ढूंढने में यकीन रखती है। गोल गोल घुमाती है, घूमती है, गरम गरम हमेशा निकलती है, और सबका अटेंशन खींच लेती है। मेष वाले जितनी जल्दी गर्म होते हैं जलेबी की तरह, उतनी जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं, एकदम जलेबी टाइप्स। मेष वाले लोगों में आमतौर पर इनिशिएटिव और एनर्जी की बात की जाती है, बस दिक्कत एक है, जलेबी गर्म हो तो जबान पर संभालनी पड़ती है, और मेष वाले गुस्से में

पसंदीदा गुलाब जामुन। गुलाब जामुन छोटा हो सकता है लेकिन मिठाई की प्लेट में उसकी प्रेजेंस इग्नोर हो ही नहीं सकती। सिंह को आमतौर पर कॉन्फिडेंस, एक्सप्रेशन और लीडरशिप से जोड़ा जाता है और गुलाब जामुन भी चुपचाप प्लेट में कभी नहीं रहता दोस्तों। ऊपर से उसकी गरम गरम चाशनी और साइड में अगर रबड़ी डाल दो तो वाह, स्वाद आ गया, बस पूरी स्पॉटलाइट ले जाता है। सिंह राशि वालों बताइए, आपको अटेंशन पसंद है या नहीं? या फिर आप बोलेंगे नहीं नहीं मुझे तो पसंद नहीं, और फिर सीक्रेटली चेक करेंगे कि सब देख रहे हैं या नहीं। फिर आते हैं कन्या राशि पे। कन्या राशि यानी वर्गो है हमारी संदेश, सिंपल, साफ, मुलायम, ना ज्यादा शोर, ना अननेसेसरी डेकोरेशन, ना कोई अननेसेसरी अटेंशन। कन्या को आमतौर पर डिटेल ओरिएंटेड, प्रैक्टिकल और ऑर्गेनाइज्ड कहा जाता है, और संदेश भी वैसे ही है। सजावट हो सकती है लेकिन असली मजा उसकी क्वालिटी और मिठास की बैलेंस में है। और कन्या वाले अगर मिठाई की प्लेट देखेंगे तो शायद ये पूछ लेंगे, इसमें कैलोरीज कितनी है? बाकी सब अरे खा लो भाई। और कन्या राशि वाले नहीं, पहले इंग्रेडिएंट्स बताओ। तो दोस्तों आज की मिठाई के डब्बे में हमने बात की जलेबी, घेवर, रसमलाई, मोतीचूर लड्डू, गुलाब जामुन और संदेश की। अब आप बताइए आपकी राशि की मिठाई आपको सूट करती है या आप अपनी मिठाई खुद चेंज करना चाहेंगे? क्योंकि मिठाई हो या राशि, हर किसी का अपना फ्लेवर होता है। मैं हूं आरजे तनुषा और आप सुन रहे थे आज की बहुत ही मीठी सी मजेदार बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन एसएन रेडियो एंड रेडियो तांत्या भील 90.8 एफएम पे। चलिए अगले मिठाई के डब्बे में मिलते हैं अगली स्टोरी और कुछ गानों के बाद। तब तक थोड़ा मीठा बोलिए, थोड़ा हंसिए और बातें इधर की उधर की कीजिए। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: पति ने पत्नी को बोला, तुम बिल्कुल राजकुमारी जैसी हो। पत्नी बोली, थैंक यू सो मच, और बताओ क्या कर रहे हो। पति ने बोला, खाली बैठा था तो सोचा थोड़ा मजाक कर लूं।

0: अब बातें इधर की उधर की में वक्त आ गया है एक खास कहानी का। हर कहानी अपने आप में बहुत खास होती है, लेकिन लेकिन दोस्तों कुछ कहानियां इसलिए भी और स्पेशल बन जाती हैं क्योंकि उन्हें कहने वाला दिल से उनसे जुड़ा होता है। आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान जो लेकर आए हैं अपनी जिंदगी का एक हिस्सा, एक किस्सा, एक एहसास, एक याद, एक कहानी, बिल्कुल अपनी आवाज में। तो चलिए खामोशी से सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे।
1: नमस्कार तनुषा जी, आपको और हमारे रेडियो SN के सारे श्रोतागण को मेरे हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी ने बचपन में हमारे दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, चाचा चाची या फिर मामा मामी से बच्चों को सुनाने वाली कुछ मजेदार और प्यारी कहानियां यानी बेड टाइम स्टोरीज सुनी होंगी। ये कहानियां ना सिर्फ मनोरंजन करती है बल्कि बच्चों को कोई अच्छी सीख भी देती है। आप में से कितनों को वो छोटी छोटी कहानियां याद है। चलिए आज मैं आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाऊंगा जो मेरी मामी जी हमें स्कूल के गर्मियों की छुट्टियों में सुनाया करती थी जब हम उनसे मिलने मुंबई जाया करते थे चेन्नई से। एक छोटा लड़का था, असल में किसी को उसका असली नाम पता नहीं था। वो थोड़ा भोला भाला, ना समझ या जाहिल था, इसलिए लोग प्यार से उसे बाड़कोबा कहते हैं। मराठी में बाड़कोबा में बाड़कोबा का मतलब होता है प्यारा सा, ना समझ, नादान बच्चा। बाड़कोबा दिल का बहुत अच्छा था, लेकिन बदकिस्मती से वो किसी भी स्थिति में अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करता था। कोई भी उसे कुछ जो भी कहता था वो आंख बंद करके उसे मान लेता था। इसलिए उसके दोस्तों और रिश्तेदारों ने उसके नाम के साथ एक और उपनाम सांग कामी जोड़ दिया। सांग का मतलब है बोलना और कामी का मतलब है काम करने वाला, तो सांग कामी का मतलब है वो व्यक्ति जो उसे दिया गया कोई भी काम पूरा कर। इस तरह सब उसे बाड़कोबा सांग कामी के नाम से जानते। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आपको समझ में आ जाएगा कि उसे यह उपनाम क्यों मिला। अब मैं बाड़कोबा की कहानी से थोड़ा हटकर आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। मेरी दो बहनें हैं, मेरे मामा मामी की भी दो बेटियां हैं। हम पांचों बच्चों की उम्र में कुल 6 साल की फर्क था, यानी फर्क है सबसे बड़ी बहन से लेकर सबसे छोटी बहन तक, और मैं ठीक बीच में यानी तीसरा नंबर पे था। जाहिर है कि मामी जी गेम का फेवरेट तो मैं ही था, तो मामी जी जब भी कहानियां सुनाती थी मेरा एक किरदार उसमें जरूर होता था और उस किरदार का फेवरेट उसकी मामी हुआ करती। तो बाड़कोबा का फेवरेट भी इस कहानी में उसकी मामी है। लंबी वीकेंड पर वो अपनी फेवरेट मामी जी के घर जाया करता था। वे ज्यादा दूर नहीं रहते थे इसलिए वो लड़का अकेला ही पैदल चलकर वहां आया जा रहा था। बाड़कोबा के जाने से पहले उसकी माँ उसे बताया करती थी, बाड़ा यानी बेटा, मामा मामी की बात मानना और उन्हें परेशान बिल्कुल नहीं करना। मामी जी तुम्हें जो कुछ भी दे बिना कोई शिकायत किए उसे सावधानी से बरोबर घर लेने का है, ठीक है। तो फिर हमारे प्यारे बाड़कोबा मामा मामी के घर गए और छुट्टियों का मजा ही। जब उसके लौटने का समय हुआ तो मामी जी ने बाड़कोबा को रास्ते में खाने के लिए उनके बहुत ही पसंदीदा केक का एक बड़ा टुकड़ा दिया और एक अच्छे से डिब्बे में डालकर दे दिया बाड़कोबा। बार रास्ते भर केक का थोड़ा थोड़ा करके केक को खाता रहा, और जब उसका पेट भर गया तो उसने बचा हुआ टुकड़ा कसकर अपने हाथ में पकड़ लिया। और आप समझ सकते हैं कि जब तक वो घर पहुंचा तब तक वो केक का टुकड़ा पूरी तरह से चूर चूर हो चुका था। मम्मी जी चिढ़ गई। उन्होंने कहा, भार्गवा, जब भी कोई तुम्हें ऐसे चीज देते तो प्लीज उसे केले के पत्ते में या फिर केले के पत्ते के एक टुकड़े में लपेट कर अपनी टोपी के नीचे रख के आना, ताकि ये नहीं बिगड़े और रास्ते में, ताकि ये नहीं बिगड़े और रास्ते में अगर बंदर हो भी तो वे इसे चुरा भी नहीं सकते, बरोबर? तो बेचारे भार्गवा ने कहा, बरोबर आई। कुछ हफ्ते बाद भार्गवा फिर से लंबे वीकेंड के लिए मामी जी के घर गया। इस बार मामी जी ने उसे एक डिब्बे में घर का बना मक्खन दिया। भार्गवा को अपनी माँ की सलाह याद आई। मामी जी के घर से निकलते ही भार्गवा ने केले का एक पौधा देखा, उसकी पत्ती का एक टुकड़ा काटा, मक्खन को सावधानी से उसमें लपेटा और उस पैकेट को अपनी टोपी के नीचे रख दिया, यानी सिर के ऊपर टोपी के नीचे। तपती जलती गर्मी, मक्खन धीरे धीरे पिघलने लगा और उसके चेहरे से बहता हुआ उसकी शर्ट तक आ गया। जब उसकी मां ने उसकी हालत देखी तो वो और भी चिढ़ गई। उन्होंने पूछा, क्या कोई मक्खन इस तरह लाता है? अगली बार प्लीज इसे ठंडे पानी के डिब्बे में रखें, ताकि ये पिघले नहीं, बरोबर? तो बेचारे भार्गवा ने कहा, बरोबर आई। कुछ हफ्ते बाद फिर से भार्गवा मामी जी के घर गया। इस बार जब वो लौटने की तैयारी कर रहा था तो मामी जी ने उसे एक प्यारा गोल मटोल छोटा सा एक कुत्ते का पिल्ला दिया। भार्गवा बहुत खुश हो गया, लेकिन उसको फिर से अपनी माँ की बात याद आई। मामी जी के घर से निकलते ही भार्गवा ने केले का एक पत्ता देखा, उसकी पत्ती का एक टुकड़ा काटा, कुत्ते को के पिल्ले को उसमें लपेटा, सड़क के किनारे पड़ा एक डिब्बा उठाया, उसमें थोड़ा पानी डाला और उस पिल्ले को के साथ पैकेट पर पानी वाले डिब्बे में डाल दिया। आप सोचे जब तक वो घर पहुंचा पिल्ले का हालत क्या रही होगी। बेचारा सांस लेने के लिए तड़प रहा था। इस बार उसकी मां को और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। उन्होंने कहा, नालायक, पप्पी को रास्ते से बांध रस्सी से बांध कर अपने साथ नहीं चला सकता, कितने बेवकूफ हो। भार्गवा रोने लगा, लेकिन वो और क्या कर सकता था। कुछ हफ्ते बाद भार्गवा के एग्जाम खत्म हो गए और वो फिर से अपनी मामी जी के घर गया। इस बार जब वो उनके घर से निकल रहा था तो मामी जी ने उसे बड़ी सी जलेबी दे दी। भार्गवा ने कहा, जलेबी? अरे वाह! लेकिन उसका पेट पहले से ही भरा हुआ था, इसलिए उसने जलेबी घर ले जाने का फैसला कर लिया था। और वो उसने क्या किया आप समझ सकते हो। अब तक उसने सोचा कि बाद में फुर्सत से खाएगा, तो अपनी मां की आखिरी सलाह याद करते हुए उसने जलेबी को एक रस्सी के सिरे से बांध दिया और दूसरा सिरा पकड़ा और निकल पड़ा। घर पहुंचकर उसने खुशी खुशी अपने माँ को बताया, आई आई देखो इस बार मामी जी ने मुझे क्या दिया है। उसकी माँ ने पूछा, क्या दिया है? तो भार्गवा देखने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन उसने क्या देखा, बस एक रस्सी जिसके सिरे पर एक खाली गांठ और कुछ नहीं, कोई जलेबी नहीं। बेचारा भार्गवा जिसका कोई सुधार नहीं, और ऐसे बहुत सारे किस्से हुए। लेकिन इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात तो कोई आपसे कुछ भी कहे तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करें कि वे क्या कह रहे हैं, उस पर अच्छी तरह सोच विचार करें और फिर वही करें जो सही हो। अब बताइए आपको कैसी लगी बालकोबा सांकामी की ये कहानी?

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: पत्नी ने पूछा, सुनो जी, लड़का बहुत पैसे उड़ाने लगा है, जहाँ भी छुपाती हूँ खोज लेता है। पति ने कहा, नालायक की किताब में रख दे, एग्जाम तक नहीं ढूंढ पाएगा।

0: सियासी मुजरिम हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स। हमें किताबें मिलनी चाहिए लिखने के लिए, पेन पेपर और कम से कम रोज का एक अखबार।
1: और तब तक हम नहीं खाएंगे, भूख हड़ताल जारी रहेगी।

0: fasting and the torture
1: went. उनकी भूख हड़ताल पूरे 114 दिन तक चली. 114 दिन.
0: Never before in the history of any.
1: दुनिया के इतिहास में कोई भी क्रांतिकारी इतने दिन तक ऐसी अमानवीय परिस्थितियों में जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सका.
0: We could crush.
1: हमने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन हम उनके जज्बे को तोड़ नहीं सके.

हेलो हेलो, मिठाई की इस दुकान पर फिर से आपका स्वागत है। मिठाई की दुकान पर आपने कभी नोटिस किया है, कोई तो सीधे रसगुल्ले पे जाता है, कोई जलेबी देखता रहता है, कोई बोलता है भैया कुछ ज्यादा मीठा मत देना, और फिर आधा किलो काजू कतली ले जाता है। और आज हमने सोचा इंसान की पसंद और पर्सनालिटी को मिठाई से जोड़कर देख

आ जाए तो। और यहीं से निकला हमारा आज का सवाल, अगर जोडियाक साइंस मिठाई होते तो कौन सी मिठाई होते? पहले 6 साइंस हम देख चुके हैं, अब मिठाई का दूसरा डब्बा खोलते हैं, क्या क्या निकलेगा उसमें से? यम यमी। आगे चलते हैं। तुला राशि, तुला यानी लिब्रा, ये है हमारी काजू कतली, पतली सुंदर और नीटली कट, और मिठाई की दुकान में इसका प्रेजेंटेशन भी एकदम क्लासी। तुला को बैलेंस, हार्मनी और एस्थेटिक से जोड़ा जाता है। और काजू कतली, काजू कतली ना बहुत हैवी है ना बहुत लाइट, बिल्कुल बैलेंस्ड।

थोड़ी रसमलाई, थोड़ी कुल्फी, थोड़े नरम, थोड़े ठंडे और पूरे ड्रीमी कॉम्बिनेशन। मेन को ट्रेडिशनली इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी और सेंसिटिविटी से जोड़ा जाता है। और रसमलाई कुल्फी, इसको खाते हुए भी लगता है एक और ले लूं और दूसरी खत्म करते ही बस अब नहीं, फिर सामने वाला पूछे एक लास्ट और जवाब होता है अच्छा एक लास्ट प्रॉमिस। मीन वाले दोस्तों, आप भी इमेजिनेशन में कभी कभी रियलिटी से पहले पहुंच जाते हैं, है ना? तो दोस्तों, आज की मिठाई के डब्बे में थे काजू कतली, काला जामुन, मालपुआ, सोन पापड़ी, जलेबा और रसमलाई कुल्फी। अब असली टेस्ट आपका है, अपनी जोडियक साइन देखिए और उसकी मिठाई पढ़िए, फिर घर में किसी और की राशि देखिए और बताइए तुम बिल्कुल अपनी मिठाई जैसे हो यार। और अगर आपको अपनी जोडियक मिठाई पसंद नहीं आई तो कोई टेंशन नहीं है, मिठाई का डब्बा एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा डेमोक्रेटिक होता है, आप अपनी मिठाई खुद चूज कर सकते हैं। मैं हूँ आरजे तनुषा और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तांतिया भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर खोलेंगे एक नया टॉपिक, एक नया डिब्बा, कोई नई बात और शायद कोई एक और नई मिठाई। तब तक मीठा बोलते रहिए, हंसते रहिए और बातें इधर की उधर की करते रहिए। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: चिंटू लड़की देखने गया शादी के लिए। वहां पर चिंटू ने पूछा, कितने तक पढ़ी हो? लड़की ने बोला, बीए तक। चिंटू ने साफ मना कर दिया और बोला, दो अक्षर पढ़ी है और वो भी उल्टी।

0: तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हट के लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।
1: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए कार्यक्रम बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत, शीर्षक है पशु पक्षियों पर आधारित प्यारे प्यारे बाल गीत।

बाल गीत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। लेखक प्रोफेसर के जी रस्तोगी, ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी, कार्यक्रम निर्माण रमेश रानी शर्मा। ये बाल गीत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए।

मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं दोस्तों, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए दोस्तों, आपका स्वागत है प्रेरणादायक गीतों के साथ, प्रेरणादायक बातों के इस बहुत खूबसूरत प्रोग्राम में। सपने देखते रहिए दोस्तों। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं आजाद भारत की पहली महिला आईएएस ऑफिसर के बारे में, जिनका नाम है अन्ना राजम जॉर्ज। वो भी लाजवाब जमाना था, देश आजाद हो गया था, तब तोला भर सोने की अंगूठी के लिए करीब 100 रुपए लग जाते थे और आईएएस की परीक्षा में बैठने के लिए 140 रुपए का शुल्क चुकाना पड़ता था। 20 की हो चुकी ये मलयाली युवती क्लर्क की नौकरी करती थी और तनख्वाह इतनी नहीं थी कि परीक्षा का फार्म भर सके। वो सोचती थी कि स्नातक करने के बावजूद क्या वो सिर्फ क्लर्क बनकर रह जाएगी। नए आजाद हुए देश में सबसे बड़ी नौकरी के लिए प्रयास में भला क्या हर्ज है। एक बार संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठकर देखें, ना कुछ होगा तो तजुर्बा तो होगा। आगे बढ़ने का इरादा पक्का था तो कदम कदम पर चुनौतियों से टकराना भी तय था। एक दोस्त की मम्मी ने फार्म भरने के पैसे दे दिए। युवती ने पहली ही बार में कामयाबी हासिल कर ली। साक्षात्कार का मौका आया तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहने का उन्होंने इरादा जताया। साक्षात्कार लेने बैठे आयोग के प्रमुख ने हतोत्साहित किया, युवती हो, भारतीय प्रशासनिक सेवा में मुश्किल होगी, विदेश सेवा या केंद्रीय सेवाओं में से कुछ चुन लो। पर वो अड़ गई, प्रशासनिक सेवा में ही जाना है। आयोग के सभी सदस्य अचंभित थे कि बुरे से बुरे हालात देखने पड़ते हैं, कड़े से कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, किसी लड़की से ये सब हो सकेगा। भला हो महान संविधान निर्माताओं का, जिन्होंने देश में कानून बना दिया था कि रोजगार में लड़का लड़की के बीच भेद नहीं किया जाएगा। लड़की अड़ गई, तभी वो देश की पहली आईएएस ऑफिसर बनी और पहुंच गई अपने कैडर प्रदेश तमिलनाडु। वहां मिल गए दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री सी रामगोपालाचारी। आईएएस रूप में युवती को देखकर चौंक गए, ये कैसे, सब कलेक्टर कलेक्टर बनेगी, फिर फील्ड ड्यूटी में जाएगी। उन्होंने समझाया कि सचिवालय में कोई काम संभाल लो, जिला जाने की नौबत भी नहीं आएगी। पर यहां भी वो युवती अड़ग रही, नहीं, मुझे आप किसी जिले में ही भेजिए, कृपया भेदभाव नहीं कीजिए। खैर, रामगोपालाचारी ने भी उन्हें अपने ही जिले होसूर में सब कलेक्टर तैनात कर दिया। लोगों को विश्वास ही नहीं होता था कि एक महिला सब कलेक्टर कैसे। उन दिनों कलेक्टर को अक्सर लाठीचार्ज या गोली चलाने का फैसला लेना पड़ता था। पता नहीं एक महिला ऐसे फैसले कैसे लेगी। ऐसे में खुद को साबित करना जरूरी था और मौके की तलाश थी। मौका जल्दी ही सामने आ गया। एक सुबह बंगले के बाहर शोर मच गया, बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। सब कलेक्टर साहिबा जल्दी जल्दी नहाकर निकली। 6 हाथियों के एक समूह ने गांव पर हमला बोल दिया था, भगाए नहीं भाग रहे थे वो। ग्रामीणों को जब कुछ न सूझा तो मदद के लिए सब कलेक्टर के यहां पहुंच गए, पर सामने एक महिला को देखकर बड़े निराश हुए। ये कैसे फैसला लेगी, कैसे समाधान करेगी। पल भर के लिए सब कलेक्टर भी स्तब्ध रह गईं, पर कुछ ही पल में उनके दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। हालांकि ऐसे मौकों पर जानवरों को मार गिराने का आदेश उन दिनों बहुत आम हुआ करता था। अचानक दिमाग में सूझा कि अगर शोर किया जाए तो हाथी भाग सकते हैं। आदेश दिया कि जिसे जो मिले जोर जोर से बजाओ। सब लोग मिलकर शोर करने लगे। ग्रामीणों ने टीन बर्तन लेकर शोर करना शुरू कर दिया, वो भी ग्रामीणों के साथ शामिल हो गई। हाथियों के दल का मुखिया शोर सुनकर दूर चल पड़ा। लोग खुश हुए तो जोश और बढ़ गया। फिर क्या था, वे हाथियों को जंगल तक छोड़कर आए। हाथियों की जान भी बच गई और ग्रामीणों की समस्या का समाधान भी हो गया। तब तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस खबर के साथ खुशी की लहर दौड़ गई कि एक कलेक्टर आई हैं, अन्ना राजम जॉर्ज। सबने माना कि महिलाएं भी कलेक्टर के रूप में कारगर हो सकती हैं। महिलाओं की राह में रोड़े बिछाने वाले तमाम पुरुषवादी अफसरों को भी एहसास हो गया कि आईएएस के रूप में महिलाओं की पदस्थापना गलत नहीं होगी। अन्ना को चेन्नई से नई दिल्ली तक प्रशासनिक सेवा में खूब मौके मिले और उन्होंने कभी निराश नहीं किया।
अब हर साल दसियों युवतों के चयन आईएएस के लिए होते हैं और अन्ना राजम जॉर्ज की याद अचानक ही आ जाती है। भूलना नहीं चाहिए कि अपने देश में एक समय वो भी था जब अन्ना राजम जॉर्ज की सेवा शर्तों में ये शामिल था कि अगर वो विवाह कर लेंगी तो उनकी नौकरी चली जाएगी। ऐसी नौबत नहीं आई। अन्ना ने जल्द ही खुद को काबिल साबित कर दिया और अविवाहित रहने की शर्त हमेशा के लिए इतिहास हो गई।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर। आप मेरे साथ है ना? मैं हूँ आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: घर वाले मुझे सुबह सुबह रोज ऐसे उठाते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध हो गया है, मैं एक अकेला सैनिक बचा हूँ।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? पीछे की ओर देखकर जिंदगी को समझा जा सकता है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए तो आगे ही देखना पड़ेगा ना। तो होता यूं है कि समय की अपनी गति है और हमारी अपनी। अक्सर वो तो आगे बढ़ जाता है, कौन, समय, और हम पीछे रह जाते हैं। हम बीते समय की खट्टी मीठी कई दफा दुख देने वाली यादों में ही अटके रहते हैं। हमारी और समय की गति में जितना अंतर बढ़ता जाता है, हमारी परेशानियां भी बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए पीछे देखना बंद करें। मेरा मकसद केवल जिंदा रहना नहीं है, मुझे कामयाब भी होना है। और मैं ऐसा कुछ जोश, कुछ करुणा, कुछ हास्य और अपने अंदाज में करूं कि बस मजा आ जाए। तो भाई, जब तक सांसें हैं, समझो तब तक जीते तो सभी लोग हैं। लेकिन जब जीने के साथ अपने अपने सपने, अपनी चाहतें, अपनी आवाज और अंदाज जोड़ देते हैं, तो हमारी जिंदगी कुछ और हो जाती है। फिर उस जिंदगी में किसी और की नहीं, हमारी अपनी झलक होती है। अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए कोशिशें तो देखिए भैया करनी ही होंगी, लेकिन केवल एक चीज को पाने के लिए बेचैन बने रहना ठीक नहीं है। संतुलन तो देखिए बनाकर रखना ही पड़ेगा। अपने मन को समझाकर आगे बढ़िए। फिर कई बार सब कुछ कर देने के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं। कहते हैं जो चीज हमारे लिए बनी है वो हम तक पहुंचेगी जरूर, भले ही वो दो पहाड़ों के नीचे दबी हो। जो चीज हमारे लिए नहीं है, लाख कोशिशें कर लें, वो भले ही आपके होठों के बीच दबी हुई हो, छूट ही जाएगी।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना? अक्सर खामोश रहते हैं वो लोग जिन्हें बात करना आता है, अक्सर उठकर चल देते हैं वो लोग जिन्हें संभल कर चलना आता है, अक्सर झुक कर चलते हैं वो लोग जिन्हें जिंदगी को जीना आता है, अक्सर जिद नहीं करते वो लोग जिन्हें प्यार से रहना आता है, अक्सर गुस्सा नहीं करते वो लोग जिन्हें अपनों में रहना आता है, अक्सर खुश रहते हैं वो लोग जिन्हें बेपरवाह रहना आता है, पर सुनो, अक्सर दुखी रहे हैं वो लोग जिन्हें दूसरों की परवाह करना आता है।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। सामना करो अपने डर का। एक बार बनारस में एक मंदिर से निकलते हुए विवेकानंद जी के पीछे बहुत सारे बंदर पड़ गए। वे खुद को बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन बंदरों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। पास खड़े हुए एक वृद्ध सन्यासी ने उनसे कहा, रुको और उनका सामना करो। विवेकानंद जी तुरंत पलटे और बंदरों की तरफ चलने लगे। उनके इस रवैये से सारे बंदर भाग गए। इस घटना से उन्होंने यह सीखा कि डर कर भागने की अपेक्षा मुसीबत का सामना करना ज्यादा सही है। कई सालों बाद उन्होंने एक संबोधन में कहा भी कि यदि कोई चीज तुम्हें डराए तो उससे भागो मत, पलटो और सामना करो।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, चांद पर पहला कदम किसने रखा था? स्टूडेंट ने कहा, नील आर्मस्ट्रांग ने। टीचर ने पूछा, अच्छा तो दूसरा कदम किसने रखा था? स्टूडेंट बोला, दूसरा भी उसी ने रखा था, लंगड़ा तो था नहीं वो।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। जब गांधी जी को अंग्रेजों ने ट्रेन से उतार दिया, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को कुली के नाम से बुलाया जाता था। महात्मा गांधी जी को भी यह अनुभव सहना पड़ा। एक बार गांधी जी ट्रेन के पहले श्रेणी के डब्बे में प्रिटोरिया जा रहे थे। उस समय काले और गोरे लोगों में भेदभाव बहुत ज्यादा था। पहली श्रेणी के डब्बे में काले लोगों को यात्रा करने की इजाजत ही नहीं थी। गांधी जी को प्रथम श्रेणी के डब्बे से निकाल दिया गया। महात्मा गांधी ने कहा कि मेरे पास प्रथम श्रेणी के डब्बे का टिकट है। फिर भी उनसे काफी बहस की गई और क्रूर अंग्रेजों ने उनकी एक नहीं सुनी और गांधी जी को सामान के साथ ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया। इस घटना ने महात्मा गांधी के जीवन का रास्ता ही बदल दिया। उन्होंने सोचा कि यह तो पूरी मानवता पर अन्याय है, मैं इसका मुकाबला करूंगा। उन्होंने ऐसे अन्याय के खिलाफ सत्य के हथियार का इस्तेमाल किया और यही हथियार को सत्याग्रह आंदोलन कहा गया।

मनुष्यों की पहचान उनके कपड़ों से नहीं होती है। स्वामी विवेकानंद। एक बार स्वामी विवेकानंद के एक विदेश मित्र ने जब उनके गुरु से मिलने की इच्छा जताई तो रामकृष्ण परमहंस से मिलने के बाद वो मित्र उनके पहनावे पर कमेंट करने लगा और कहा कि आप जैसे व्यक्तित्व का चरित्र निर्माण करने वाले ये कैसे गुरु हैं जिन्हें कपड़े पहनने का भी सलीका नहीं है। तब स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत विनम्रता से कहा, आपके देश में चरित्र का निर्माण दर्जी करता होगा, लेकिन हमारे भारत में चरित्र का निर्माण आचार विचार से होता है।

क्या आपको पता है बैंगनी रंग किसी भी राष्ट्र के ध्वज में इस्तेमाल नहीं होता। अब यह है ना बड़ी रोचक बात, क्या वजह है क्या आपको पता है? किसी भी देश के लिए उसका राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग उसकी आन बान शान होता है। देश का हर नागरिक, सेना और उसकी सरकारें झंडे के मान सम्मान के लिए हर कदम उठाती हैं। झंडों पर नजर आने वाले रंग के मायने होते हैं। जैसे भारत के तिरंगे में केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है, वहीं सफेद रंग सच्चाई, शांति और पवित्रता का प्रतीक है और हरा रंग संपन्नता की निशानी है। इसी तरह अलग अलग देशों के झंडों का मतलब भी अलग अलग होता है। मगर क्या आपने कभी किसी भी देश के राष्ट्रीय ध्वज में पर्पल कलर, बैंगनी कलर देखा है? शायद आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि झंडों में बैंगनी रंग बेहद दुर्लभ है। इसके पीछे एक बहुत ही मजेदार, बहुत ही रोचक वजह है जो शायद आप नहीं जानते होंगे। वर्ल्ड मीटर्स वेबसाइट के अनुसार दुनिया में 195 देश हैं। इनमें से सिर्फ 2 देश ही ऐसे हैं जिनके राष्ट्रीय ध्वज पर बैंगनी रंग दिखाई देगा। बाकी दुनिया के किसी भी देश के झंडे पर पर्पल रंग नहीं है। इसके पीछे की वजह भी काफी रोचक है। दरअसल 1800 के वक्त तक बैंगनी रंग को बनाना बहुत ही कठिन और महंगा हुआ करता था। क्वीन एलिजाबेथ ने तो यह घोषणा कर दी थी कि रॉयल फैमिली के अलावा कोई भी बैंगनी रंग नहीं पहनेगा। इस वजह से बैंगनी रंग को हासिल करना आम लोगों की बस की बात नहीं थी। बैंगनी रंग को हासिल करना भी बहुत मुश्किल था। दरअसल उन दिनों बैंगनी रंग लेबनान के छोटे समुद्री घोंगे में पाया जाता था, जिसे जुटाना बहुत मुश्किल था। 1 ग्राम बैंगनी रंग बनाने के लिए 10,000 से ज्यादा घोंगे मार दिए जाते थे जिनमें वो रंग निकलता था। इसके बाद डाई बनाने के लिए भी उसमें बहुत मेहनत लगती थी और डाई का खर्च भी बहुत ज्यादा था। उन दिनों 1 पाउंड बैंगनी डाई खरीदने का खर्च 41 लाख रुपए से भी ज्यादा था। इस कारण से देशों ने अपने झंडों में बैंगनी रंग रखना मुनासिब नहीं समझा। हालांकि 1856 में विलियम हेनरी परकिन सिंथेटिक बैंगनी डाई बनाने में कामयाब हुए, जिसके बाद इसकी कीमतें कम होने लगी। मगर देशों ने फिर भी बैंगनी रंग को त्याग ही दिया। क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि वो 2 देश कौन हैं जिनके झंडे में बैंगनी रंग है? अब आपको हम उन देशों के बारे में बताते हैं जिनके झंडे में बैंगनी रंग दिखाई देता है। पहला देश है डोमिनिका, जिसके ध्वज को साल 1978 में अपनाया गया था। दूसरा देश है निकारागुआ, जिसके ध्वज को 1908 में अपनाया गया था और इसे आधिकारिक मान्यता 1971 में मिली। स्पेन के राष्ट्रीय ध्वज में भी कुछ वक्त तक बैंगनी रंग देखने को मिला था, उसके बाद हट गया। क्या वजह रही जो नैनो कार फेल हो गई? 2009 में टाटा की नैनो कार के लॉन्च होने से पहले इसको लेकर चर्चा का बाजार बहुत गर्म था। लोग इस कार को लेकर तरह तरह के सपने देख रहे थे, लेकिन लॉन्च के पहले टाटा नैनो को जो शोहरत हासिल हुई थी, मार्केट में आने के बाद उस हिसाब से उसकी बिक्री नहीं हुई, या यूं कहा जाए कि टाटा की नैनो मार्केट में धड़ाम से गिर पड़ी। आखिर टाटा की नैनो का यह दुर्भाग्य क्यों हुआ? इसको समझने के लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स की सबसे पसंदीदा किताब जॉन ब्रुक्स द्वारा लिखी गई इट इज बिजनेस एडवेंचर से मदद मिल सकती है। इस पुस्तक के एक अध्ययन में एडसल कार का जो दुर्भाग्य हुआ था, उसी पर विस्तृत चर्चा की गई है। 1955 में फोर्ड मोटर कंपनी ने $2,400 से $4,000, मतलब 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच की कीमत की एक कार मैन्युफैक्चर करने की घोषणा की। इस कार को लेकर भी उस समय बहुत शोर था, जैसा टाटा नैनो को लेकर हुआ। कार का नाम फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड के बेटे एडसल फोर्ड के नाम पर एडसल रखने का फैसला लिया गया था। एडसल के हवुए ने लोगों के मन में कार को लेकर कल्पनाओं और सपनों की झड़ियां लगा दी। इसके इर्द गिर्द जो हवा खड़ा किया गया, उससे सब सोचने लगे थे कि यह आम कारों से कुछ हटकर होगी। जब 1957 में इसे मार्केट में उतारा गया तो लोगों ने देखा कि यह तो कार आम कारों की ही तरह है, इसमें भी 4 पहिए लगे हैं और 1 इंजन है, तो उनका कार से मोह भंग हो गया।
नतीजा यह हुआ कि कार बाजार में औंधे मुंह गिरी। फोर्ड को इस कार पर 20 करोड़ का घाटा उठाना पड़ा। बस यही कुछ कारण टाटा की नैनो को भी फेल होने पर रहा। 2009 में लॉन्च की गई नैनो की सेल्स 2010-11 में और 12-13 में टाटा मोटर्स की कुल सेल्स का 23-24% थी, लेकिन 2011-12 में 74,527 तक इसकी सेल्स पहुंचने के बाद अचानक इसकी मांग में बहुत जोरदार गिरावट आई। सिर्फ 2 साल के अंदर ही इसकी सेल्स में 70% की गिरावट आई और इसकी सेल्स 2013-14 में 21,129 पर सिमट के रह गई। जबकि टाटा मोटर्स ने गुजरात के सदानंद में 2,50,000 नैनो प्रतिवर्ष उत्पादन के लिए फैक्ट्री भी बनाई थी। आमतौर पर यह होता है कि जब किसी प्रोडक्ट को लेकर ज्यादा हवा खड़ा कर दिया जाए तो लोग तरह तरह की कल्पनाएं करने लगते हैं और कुछ अलग होने का सपना देखने लगते हैं। जब हकीकत कुछ और होती है तो वो खुद को बहुत ठगा हुआ सा महसूस करते हैं और प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाता है।

0: तो दोस्तों, प्रेरणादायक गीतों के साथ प्रेरणादायक बातों के इस प्रोग्राम में आज इतना ही। भूलिएगा नहीं, सपने देखते रहिए।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
2: कुछ कहती हैं सब्जियाँ,
3: आज बच्चे खेल खेल में सब्जी बने हैं। उन्होंने मिलकर तय किया कि बबलू महाराजा कद्दू बनेगा, उसकी राजकुमारी मिर्ची बनेगी चिन्नम्मा, मुन्ना राजकुमार करेला बनेंगे, सोनू राजकुमार प्याज बनेंगे, टमाटर बनेंगी पिंकी, पिंटू राजकुमार आलू बनेंगे और मुर्गन राजकुमार गाजर बनेंगे। सब्जियों की महासभा आरंभ होती है।
4: आज हम सब्जी खेलेंगे।
5: हाँ, सब्जी खेलेंगे।
6: चन्नम्मा तुम मिर्ची बनोगी,
7: पिंकी तुम टमाटर बनोगी।
8: अरे मैं क्या बनूंगी, मुझे भी तो बताओ। मैं भिंडी बन जाती हूँ।
9: मैं करेला बनूंगा।
10: बबलू तुम दही बनोगे,
11: तुम मिर्ची बनोगे।
12: मैं मिर्ची बनूंगी,
13: तुम टमाटर बनोगे।
14: गाजर बनोगे।

0: राजकुमारी मिर्ची।
1: हाँ पिताजी।
0: तुम जानती हो कि मुझमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है, मैं कई रोगों से लोगों को बचाता हूँ। हाँ, मैं या तुम्हारे भाई तुमसे कुछ कह दें तो बुरा नहीं मानना चाहिए। हम सब मिलकर रहें तो सबका भला होता है।
1: अच्छा।
0: हाँ, बेटी राजकुमारी मिर्ची, तुम कुछ कहो बेटी।
1: पिताजी, मैं स्वाद में तीखी हूँ, लेकिन लोगों की आंखों की रोशनी बढ़ाती हूँ।
0: बिल्कुल।
1: उनकी त्वचा की रक्षा करती हूँ।
0: सही।
1: मुझे ये समझ में नहीं आता कि राजकुमार टमाटर, करेला, आलू और गाजर क्या करते हैं। प्यास, तुम तो बताओ तुम क्या करते हो।
2: बहन मिर्ची, मैं स्वाद में बहुत सादी हूँ। मैं सभी सब्जियों के साथ घुल मिल कर रहती हूँ।
1: अच्छा।
2: और हाँ, मैं बीमारियों से लड़ने की शक्ति देती हूँ।
1: ओह, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं फिर भी खुद को बड़ा समझती हूँ।
2: अच्छा, बड़ा समझती हो।
3: हाँ, बड़ा तो मैं भी हूँ। मैं करेला हूँ। मैं कड़वा तो हूँ पर सेहत के लिए अच्छा हूँ।
4: तुम सब मुझे कैसे भूल गए।
5: अरे बताओ बताओ कौन हो तुम।
4: मैं हूँ सब्जियों का राजा आलू।
3: आलू
6: आलू
1: आलू तो हमें बहुत पसंद है।
6: आलू के फायदे तो बताओ।
4: मैं सभी को शक्ति देता हूँ।
7: मुझे भी चाहिए शक्ति।
8: मुझे भी शक्ति। मुझे चाहिए। मुझे चाहिए। मुझे चाहिए।

0: ये सब तुम्हारे भाई बहन हैं, इनसे मिलजुल कर रहना चाहिए।
1: जी पिताजी, मैं इनके साथ मिलजुल कर रहूंगी।
0: शाबाश।
2: हाँ हाँ, सब मिलजुल कर रहेंगे।
3: हाँ, सब मिलजुल कर रहेंगे।
0: ये हुई ना बात।
1: गाजर, आलू, करेला, तुम सब मेरे भाई बहन हो।
2: हाँ मिर्ची, हम सब
3: भाई बहन हैं।
4: तभी अचानक से राजकुमारी मिर्ची गिर पड़ती है।
1: ओ, मैं तो गिर गई।
2: अरे मिर्ची,
4: सभी भाई बहन उसे मिलकर उठाते हैं।
0: देखा बेटी, तुम्हारे भाई बहन तुम्हें कितना चाहते हैं। चाहते हैं ना?
1: जी पिताजी।
0: सभी ने मिलकर तुम्हें उठाया?
1: हाँ पिताजी।
0: हाँ देखो बेटी, मिलकर रहने से सभी का फायदा होता है, होता है कि नहीं?
1: हाँ पिताजी।
0: हाँ, प्यार फैलता है, एकता बढ़ती है, बढ़ती है ना एकता?
1: हाँ पिताजी।
0: हाँ, तो इसलिए बेटा हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, कभी भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए।
1: हाँ पिताजी, आप सही कहते हैं। मैं खुद पर घमंड करती थी, असली प्यार तो मिलजुल कर रहने में है।
0: हाँ।
1: मैं आगे से कभी घमंड नहीं करूंगी।
0: ये हुई ना बात। शाबाश बेटी।
5: तो सुना आपने बच्चों, सभी सब्जियों के कुछ ना कुछ फायदे जरूर होते हैं, इसीलिए अब से ये नहीं कहना कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना। बात ये है बच्चों कि हमें है सभी सब्जियां खाना।
6: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
5: शिक्षक जो गढ़े बचपन को,
7: ये कार्यक्रम विशेष रूप से चर्चा करता है कि बच्चे के जीवन के सर्वांगीण विकास में अभिभावक और मुख्य रूप से शिक्षक की क्या भूमिका होती है।
5: साथियों, शिक्षकों के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये कार्यक्रम शिक्षक प्रशिक्षण के परंपरागत ध्वनि कार्यक्रमों की शैली से थोड़ा अलग है। यह कार्यक्रम विश्व के महान आविष्कारक और वैज्ञानिक थॉमस एडिसन के जीवन और उपलब्धियों के इर्द गिर्द बुना गया है।
8: महान आविष्कारक थॉमस एडिसन का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहायो राज्य के मिलान नगर में 11 फरवरी 1847 को हुआ था। वे अपनी माता नैन्सी एलियट और पिता सैमुअल एडिसन की सातवीं संतान थे।
9: बचपन से ही वो बहुत ही जिज्ञासु थे। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान वो शिक्षकों से अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ लिया करते थे जिनका जवाब देना कठिन होता था। शिक्षक और सहपाठी उन्हें शरारती और मूर्ख समझते थे।
5: साथियों, बच्चा जिज्ञासाओं का पिटारा होता है, वह तो प्रश्न पूछेगा ही, तब तक जब तक हम उसे पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन यदि उसे हतोत्साहित किया तो शायद फिर वह कभी नहीं पूछेगा।
8: एक दिन की बात है, शिक्षक ने बालक एडिसन को बुलाया और उसके हाथ में एक चिट्ठी थमा कर कहा,
10: अपनी माँ को यह चिट्ठी दे देना।
8: भोले भाले बच्चे ने वो चिट्ठी ली और घर पहुंचकर अपनी माँ को दे दी।
11: माँ, ये चिट्ठी।
8: माँ ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वो चिट्ठी अलमारी में रख दी।
9: दूसरे दिन से एडिसन फिर कभी स्कूल नहीं गए। वो घर पर ही पढ़ाई करने लगे। एक बार उन्होंने अपनी माँ से पूछा,
11: माँ, आप मुझे स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो? क्या अध्यापक ने चिट्ठी में कुछ लिखा है?
9: बेटा एडिसन, उन्होंने ये कहा कि आपका बेटा बहुत बुद्धिमान है।
11: अच्छा,
9: इसलिए वो हमारे विद्यालय के लायक नहीं है। क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान हो ना।
11: अच्छा,
9: उनको लगता है कि उनके विद्यालय में तुम्हारी प्रतिभा वैसी नहीं निखर पाएगी जैसी कि आशा की जाती है।
11: हाँ
9: ठीक है, बहुत अच्छे।
5: तो शिक्षक मित्रों, ये घटनाक्रम एक बेहद गंभीर प्रश्न पैदा करता है। जरा सोचिए कि यदि आप बालक थॉमस एडिसन के शिक्षक होते तो किसी बच्चे का मूल्यांकन कैसे करते और उसकी सूचना बच्चे के अभिभावकों को किस प्रकार देते। साथियों, आप भी शिक्षक हैं। आपने सुना कि एडिसन की माँ, जो स्वयं शिक्षिका थी, उन्होंने किस प्रकार अपने बच्चे के किसी भी प्रश्न को नजरअंदाज नहीं किया। तो फिर क्यों ना हम भी यथासंभव बिना खीजे बच्चों के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें।
9: उनकी माँ जानती थी कि ये बच्चा मानसिक रूप से कमजोर नहीं है। उन्होंने एडिसन को घर पर ही पढ़ाया। वो एडिसन के सभी प्रश्नों का उत्तर यथासंभव देने की कोशिश करती और प्रारंभ में उन्हें बुनियादी साक्षरता के साथ साथ अंक गणित पढ़ाया। उन्हें विशेषकर विज्ञान में बहुत रुचि थी। एक बार की बात है, वो रेल के डिब्बे में ही कुछ रासायनिक प्रयोग कर रहे थे कि फास्फोरस के गिर जाने के कारण वहां आग लग गई, भगदड़ मच गई।
12: इतने में रेल अधीक्षक वहां भागा भागा आया और जब उसने सारा माजरा देखा तो उसके क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने एडिसन को एक जोरदार थप्पड़ मारा जिसके कारण वे हमेशा के लिए आंशिक रूप से बहरे हो गए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पढ़ना व प्रयोग करना जारी रखा।
5: तो सुना आपने दोस्तों, रेल के डब्बे में ही प्रयोगशाला, जिसका अंतिम परिणाम दुर्घटना थी। जी हाँ, बच्चा कौतुक और रोमांच से भरा होता है। वह जरूर नए नए प्रयास करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में हमें उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। पीटना समाधान नहीं है। तो आइए अब सुनते हैं उनकी शिक्षक माँ ने किस तरह इन परिस्थितियों का सामना किया।
12: उनकी माँ उन्हें पढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकें देती और प्रोत्साहित करती कि वे जितना अधिक हो सकता है अवश्य पढ़ें। थॉमस एडिसन के मन में पढ़ने की अदम्य इच्छा उनकी माँ के कारण ही उत्पन्न हुई।
9: एक बार उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था,
12: ओह, मैंने यथासंभव लगभग सब कुछ पढ़ा है जो कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है। मुझे पुस्तकों से अगाध प्रेम है।
5: तो साथियों, जैसा कि आपने सुना, एडिसन की माँ स्वयं शिक्षिका थी, लेकिन अक्सर अभिभावक शिक्षक नहीं होते, है ना? तो कितना अच्छा हो यदि बच्चे के जीवन में एडिसन की माँ की तरह ही हमारी भी सकारात्मक भूमिका हो जाए।
9: थॉमस एडिसन ने एक बार अपनी माँ के बारे में कहा था,
12: मेरी माँ ने ही मेरा निर्माण किया। वे बहुत सच्ची थी और मुझ पर विश्वास करती थी। उन्होंने ही मुझे बताया कि मुझे किसी के लिए जीना है। कोई ऐसा है इस दुनिया में जिसे मुझे निराश नहीं करना है।
5: साथियों, हम सब जानते हैं कि थॉमस एडिसन को मुख्य रूप से बिजली के बल्ब के आविष्कार के लिए जाना जाता है। वैसे उन्होंने 1300 के लगभग आविष्कार किए और उनका पेटेंट लिया।
12: बिजली के बल्ब के आविष्कार की कहानी अत्यंत रोचक है।
9: इसका आविष्कार करने के लिए थॉमस एडिसन को सैकड़ों बार असफलता का सामना करना पड़ा। शुरू में कई बल्ब चले, लेकिन कुछ ही सेकंड या मिनट में टूट गए। लेकिन एडिसन ने जैसे हार मानना सीखा ही नहीं था।
12: एक बार की बात है, उनके सम्मान में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई,
8: बहुत से पत्रकार जमा थे। एक पत्रकार ने पूछा,
9: मिस्टर एडिसन, बिजली के बल्ब के आविष्कार की प्रक्रिया में आप कितनी बार असफल हुए?
8: लगभग 10,000 बार।
9: 10,000 बार?
8: लेकिन मैं उन्हें असफलता नहीं कहूंगा।
9: अच्छा,
8: मैं कहूंगा कि मैंने 10,000 उन तरीकों को खोजने में सफलता पाई जिनसे बिजली का बल्ब बनाया नहीं जा सकता था।
9: अरे वाह,
8: वे दरअसल 10,000 स्टेप्स थे जिन्हें तय करके मैं सफलता तक पहुंचा।
9: क्या बात है। तो साथियों, ये था असफलताओं के प्रति थॉमस एडिसन का दृष्टिकोण। उन्होंने अपनी असफलताओं को भी बहुत सकारात्मक ढंग से देखा। अपने बहरेपन के बारे में एक बार उन्होंने विनोदपूर्ण ढंग से कहा था,
8: मैं ठीक से सुन नहीं पाता हूँ, इसके मुझे 2 लाभ मिलते हैं। पहली बात, लोग मेरे पास आकर व्यर्थ की बात नहीं करते, और दूसरी बात, इसके कारण मैं पुस्तकों और वैज्ञानिक सोच को अधिक समय दे पाता हूँ।
9: एक दिन एडिसन ने पुरानी अलमारी को खोला और यूं ही कुछ देखने लगे कि तभी एक लिफाफा नीचे गिरा। एडिसन ने उसे उठाया। अरे, ये तो वही पत्र था जो उनके स्कूल के अध्यापक ने भेजा था। उन्होंने उसे पढ़ा। लिखा था,
8: डियर मिसेस एडिसन, आपका बच्चा बेहद मंद बुद्धि का है और वो कुछ सीख नहीं सकता। उसके स्कूल में होने से दूसरे बच्चों पर भी फर्क पड़ता है, इसलिए अच्छा होगा उसके लिए कोई दूसरा स्कूल देख ले या उसे स्वयं ही पढ़ा ले।
9: थॉमस एडिसन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये है किसी बच्चे के सर्वांगीण विकास में एक माता की सकारात्मक भूमिका। उन्होंने हमेशा ये बोल बोल कर कि तुम जीनियस हो, अपने बेटे का मनोबल बढ़ाया और यहां तक बढ़ाया कि थॉमस एडिसन इतिहास का स्वर्णिम हस्ताक्षर बन गए। जीवन के संघर्षों के प्रति उनका एक कथन बहुत प्रसिद्ध है,
8: हम तब नहीं हारते जब हम गिर जाते या हार जाते हैं। दरअसल हम तब हारते हैं जब हम गिरकर उठने से इनकार कर देते हैं। 18 अक्टूबर 1931 को वेस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में 84 वर्ष की आयु में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। विश्व उनके अमूल्य योगदान को सर्वदा याद रखेगा।
6: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
7: और अब सुनते हैं एक अरबी लोक कथा जिसमें अपराधी के विरुद्ध गवाही दे रहा है एक दरख्त।
13: पुराने जमाने की बात है, एक शख्स काजी की अदालत में हाजिर हुआ और एक दूसरे शख्स पर 100 रुपए का दावा किया। काजी ने पूछा,
14: तुम्हारे पास कोई गवाह है?
13: आदमी ने कहा,
14: नहीं, बगैर किसी गवाह के कैसे काम चलेगा? हाँ, एक सूरत ये हो सकती है कि मैं उस शख्स से कसम लेकर पूछूं।
13: दावा करने वाला शख्स ये सुनकर बुरी तरह रोने लगा और बोला,
15: हुजूर, ये शख्स बहुत कसमें खाता है, इसकी कसम पर आप एतबार ना करें, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा।
13: काजी ने जब उस आदमी को इस तरह रोते देखा तो वो समझ गया कि उसका दावा सच्चा है, लेकिन मुश्किल ये थी कि वो बगैर किसी गवाही के फैसला भी नहीं दे सकता था, इसलिए उसने पूरा किस्सा जानने की कोशिश की। दावा करने वाले ने बताया,
15: हुजूर, ये मेरा पुराना दोस्त है, इसे एक बार किसी काम के लिए 100 रुपए की अशद जरूरत थी, ये बहुत परेशान था,
14: इसने अपनी परेशानी का जिक्र मुझसे किया। मुझे इसकी परेशानी जानकर बहुत दुख हुआ और मैंने जिंदगी भर की कमाई जो सिर्फ 100 रुपए थी अपनी कमर से खोलकर इसके हवाले कर दी। इसने ये रकम मुझसे 1 महीने के वादे पर ली थी। अफसोस, आज इस बात को 4 महीने हो गए लेकिन इसने अब तक मेरे रुपए वापस नहीं किए।
13: काजी ने पूछा,
14: तुमने किस जगह इसको रुपए दिए थे?
15: एक दरख्त के नीचे।
14: जब तुम्हारा कहना यह है कि तुमने एक दरख्त के नीचे उसको रुपए दिए थे तो फिर ये क्यों कहते हो कि तुम्हारा कोई गवाह नहीं है?
13: काजी ने दूसरे शख्स से पूछा,
14: तुम क्या कहते हो? क्या ये दरख्त और जगह की बात सही है?
16: ये झूठ बकता है। मैंने न उस दरख्त को देखा है और न ही उस जगह को जानता हूँ। मैंने तो इससे कर्ज लिया ही नहीं।
13: काजी ने उसकी बात सुनकर कहा,
14: अच्छा तुम अभी यहीं बैठो।
13: फिर दावा करने वाले शख्स से कहा,
14: तुम परेशान मत हो, उस दरख्त के पास जाओ और उससे कहो कि तुमको काजी ने बुलाया है, चलो और गवाही दो।
13: काजी की बात सुनकर दूसरा शख्स मुस्कुराने लगा। पहले शख्स ने कहा,
15: काजी साहब मुझे डर है कि मेरे बुलाने से दरख्त नहीं आएगा।
13: काजी ने उसकी बात सुनकर अपनी मोहर उसको दी और कहा,
14: ये मोहर ले जाओ और दरख्त से कहना कि ये काजी की निशानी है, तुम जो कुछ जानते हो उसकी गवाही काजी की अदालत में हाजिर होकर दो।
13: मुद्दई ने काजी की मोहर ली और चला गया। दूसरा शख्स वहीं बैठा रहा। काजी साहब दूसरे मुकदमों को सुनने और फैसले करने में मसरूफ हो गए और उस शख्स की तरफ से निगाहें हटा ली। थोड़ी देर के बाद काजी ने अचानक उससे सवाल किया,
14: वो शख्स उस जगह पहुंच गया होगा या अभी नहीं?
13: उसने जवाब दिया,
14: अभी नहीं।
13: काजी जी ये सुनकर फिर मुकदमों में मसरूफ हो गए। मुद्दई काजी की मोहर लेकर दरख्त के पास गया। वहाँ उसने दरख्त को काजी की मोहर दिखाई, उससे कहा,
15: काजी ने तुम्हें गवाही देने के लिए बुलाया है।
13: वो कुछ देर तक जवाब के इंतजार में वहीं खड़ा रहा और जब कोई जवाब नहीं मिला तो बहुत रंजीदा होकर काजी के पास लौट आया। उसने काजी साहब को बताया,
15: हुजूर, दरख्त ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, ना ही वो मेरे साथ अदालत में गवाही देने आया है।
14: तुमको पता नहीं है, दरख्त तो यहाँ पर गवाही देकर चला गया।
13: काजी ने फिर ये फैसला सुनाया,
14: मुद्दई का दावा सही है, 100 रुपए उसे वापस दिए जाएं।
13: दूसरा शख्स ये फैसला सुनकर फौरन बोला,
16: काजी साहब मैं तभी से यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने कोई भी दरख्त गवाही देने नहीं आया, फिर आपने ये फैसला कैसे कर दिया?
13: काजी ने जवाब दिया,
14: बेशक यहाँ कोई दरख्त नहीं आया लेकिन जब मैंने तुमसे अचानक पूछा था कि क्या वो शख्स उस जगह पहुँच गया होगा तो तुमने जवाब दिया था कि अभी नहीं। अगर ये बात सच ना होती तो तुम ये जवाब हरगिज ना देते कि वो अभी वहां ना पहुंचा होगा।
6: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज।
1: प्यारे बच्चों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में देश के हर कोने से और हर जाति और उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया। उत्तर पूर्व के राज्यों के रणबांकुरों ने भी अंग्रेजी हुकूमत के दांत खट्टे कर दिए थे। इन्हीं में से एक महिला क्रांतिकारी थी रानी गाइडनल्यू, जिन्हें उनके गांव वाले रानी पुई नाम से पुकारते थे। रानी पुई का अर्थ है रानी माँ। गाइडनल्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 को नागालैंड के लांगकाओ नामक स्थान पर हुआ। वो रांगमेई नाम की आदिम जाति से संबंध रखती थीं।

क्या हो रहा है यहाँ पर?

0: इस मिट्टी में तो हम पैदा हुए हैं, ये कैसे दे देंगे हम आपको?
1: अरे भला फिर हम क्या खाएंगे, अपने जानवरों को क्या देंगे?
0: ये तो गलत है, अत्याचार है हम पर।
1: अरे हमारे बच्चे तो भूखो मर जाएंगे।
2: चलो भागो यहाँ से, हट जाओ।
3: भाइयों, हिम्मत और समझदारी से काम लो। हम लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे।
4: हाँ जरूर लड़ेंगे, बिल्कुल।
3: हम अपनी जमीन अवश्य वापस लेंगे, चाहे कुछ क्यों ना करना पड़े।
0: हाँ जादो नाग भैया, हम लड़ेंगे, हमें अपने हथियार उठाने ही पड़ेंगे, ये फिरंगी ऐसे नहीं मानेंगे।
1: कल से हम सभी अलग अलग पहरा देंगे, हम भी देखते हैं कैसे आते हैं वो दोबारा इधर।
0: हाँ हम उन पर हमला करेंगे, हम उन्हें यहाँ से कुछ भी नहीं ले जाने देंगे, ये जंगल हमारा है।
3: ठहरो, गुस्से से बात और बिगड़ सकती है, पहले हम उनसे ऐसा न करने के लिए कहेंगे। हाँ हम उन्हें समझाएंगे कि इससे हम आदिवासियों का जीवन खत्म हो जाएगा। हम सत्याग्रह करेंगे, शांति से धरना देंगे, अंग्रेज अफसरों का घेराव करेंगे।
5: लेकिन जादो भैया, अंग्रेज मानेंगे नहीं, उनकी नीयत ठीक नहीं है। कल वो हमारे घरों पर कब्जा कर लेंगे और हम सबको मार डालेंगे।
3: नहीं गाइडिंग लू, जो अभी हुआ नहीं उसकी चिंता कैसी। हमें उम्मीद है कि अंग्रेजों के बड़े अधिकारी हमारी बातें जरूर सुनेंगे।
5: जादो भैया, अगर उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी तो?
3: तब तेरा ये भाई चुप नहीं बैठेगा गाइडिंग यू। हम अपना आंदोलन और तेज करेंगे और उन्हें मजबूर कर देंगे।
1: हाँ ये ठीक रहेगा।
2: यही है जादो ना।
5: अरे अरे कैसे पकड़ लोगे हमारे भैया को?
2: हटो पीछे। नहीं मोंटी, ये ले।
1: क्यों मार
3: रहे हो? कायर, इसे क्यों मारता है? मैं तैयार हूँ मार खाने को, हिम्मत है तो मुझे मार।
0: यही है वो अंग्रेज अफसर, यही अपने सिपाहियों को भेजता है। देखो तो, देखो कैसे आंखें दिखा रहे हैं। देखो इसे।
2: सिपाहियों, अरे खड़े खड़े मुझे क्या देखते हो? हटाओ सबको इधर से, मारो पीटो भगाओ इधर से। इसके साथियों को भी ले चलो। जादो नांग चला था सबको भड़काने, हमसे टकराएगा तू।

0: बच्चों, 1931 में जादोनांग पर मुकदमा शुरू हुआ और एक दिन उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। अंग्रेजों का अत्याचार और बढ़ता गया। मणिपुर, असम और नागालैंड के आदिवासियों को जंगलों से बेदखल कर दिया। लकड़ियों और पेड़ों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। मासूम आदिवासी मारे जाने लगे, कभी भूख से तो कभी गोरे अंग्रेजों की गोलियों से। यही नहीं, उन पर जुर्माना लगाया गया, उनके लाइसेंसी हथियार तक छीन लिए गए। तब आंदोलन का नेतृत्व 17 वर्ष की गाइडन ल्यू ने किया। और उनके नेतृत्व में नागा क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। एक बार रात का समय था, नागाओं की एक गुप्त स्थान पर बैठक हो रही थी।
1: भैया जादोनांग की कुर्बानी को हम बेकार नहीं जाने देंगे। अब हमारे पास हथियार उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं।
2: कोई रास्ता नहीं है।
1: सब लोग अपनी औरतों बच्चों को सुरक्षित जगहों पर भेज दें।

0: हर आदमी लड़ने के लिए तैयार रहे।
1: हम
0: अंग्रेजों को मजा चखाएंगे, उन्हें इस गांव में घुसने नहीं देंगे। लेकिन खबरदार, सारा काम सावधानी और हिम्मत से हो। अंग्रेज कोई भी चाल चल सकते हैं।

0: लगता है पहाड़ी के उस पार कुछ अंग्रेज सिपाही हैं। साथियों तैयार हो जाओ।
1: तैयार है।
0: इससे पहले कि वो इधर आए हम उन पर हमला कर देंगे।

0: इस लड़ाई में कई अंग्रेज सिपाही मारे गए। लड़ते लड़ते कुछ आदिवासी भी जान गंवा बैठे। बच्चों, गाइडन ल्यू को सब प्यार से रानी गाइडन ल्यू कहते थे। ये छापामार दस्ता उन्होंने 1933 में बनाया। इन नागा आदिवासियों ने अंग्रेजों से कई लड़ाइयां लड़ी और अंग्रेजों को काफी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अंग्रेज तो जैसे ढीठ हो गए थे।
1: सुनो सुनो सुनो, सभी लोगों को बताया जाता है कि अपने सारे हथियार एक हफ्ते के भीतर पुलिस पोस्ट में जमा कर दें, चाहे ये लाइसेंसी हो या बिना लाइसेंसी। ऐसा न करना अपराध माना जाएगा और उन्हें पकड़कर बंद कर दिया जाएगा। कंपनी सरकार ने टैक्स लगाने का भी फैसला लिया है और टैक्स ना देने वालों पर मुकदमा चलाया जाएगा। सुनो सुनो सुनो।
2: अब तो हद हो गई है, ये अंग्रेज किसी ना किसी बहाने हमें यहाँ से निकाल कर ही दम लेंगे।
3: हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, इन्हें टैक्स कहाँ से देंगे?
4: टैक्स भी किस बात का, हमारा देश, हमारी धरती, फिर कैसा टैक्स?
3: और क्या, हम इंग्लैंड में तो नहीं रहते, और फिर ये अंग्रेज हमें खाने कमाने दे तब ना।
4: रानी रानी, खबर मिली है कि शाम तक अंग्रेजों के सिपाही इधर आने वाले हैं। जरूर वो तुम्हें खोजने के लिए छापे मारेंगे, तलाशी लेंगे, लोगों को परेशान करेंगे। अच्छा होगा कि तुम ये जगह बदल दो, हम सब संभाल लेंगे।
2: नहीं नहीं
5: रानी, भूलना मत, जीते जी इस गांव का कोई भी आदमी गद्दारी नहीं करेगा। हम जान दे देंगे लेकिन अपना मुंह नहीं खोलेंगे।
4: नहीं खोलेंगे। और खबरदार, किसी ने टैक्स दिया तो
6: नहीं, नहीं, कोई देगा, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा।
0: बच्चों, इस तरह रानी गाइडन ल्यू और अंग्रेज सिपाहियों के बीच लुका छिपी का खेल चलता रहा। रानी और उनके साथी ठिकाने बदलते रहे। गाइडन ल्यू ने अंग्रेजों के खिलाफ टैक्स न देने का अभियान छेड़ा और किसी ने टैक्स नहीं दिया। लेकिन एक दिन अंग्रेजों ने अचानक गाइडन ल्यू के खुफिया ठिकाने पर छापा मारा। अफरा तफरी, लड़ाई, गोलियां शुरू हो गईं।
2: कायरों की तह क्यों पकड़ते हो? हिम्मत है तो पहले लड़ाई करो।
7: अरे चल यहाँ से, तुम्हारा खेल खत्म, अब जेल में करना लड़ाई।
2: नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ो छोड़ो मुझे।
7: सिपाहियों, जो भी बच गया है सबको पकड़ के बांट दो, बहुत परेशान किया है हमको।
2: तो मुझे ले चलो, लेकिन इन सबको छोड़ दो, छोड़ो इन्हें।
7: अच्छा
2: छोड़ दो।
7: अच्छा, इनको यही छोड़ दूं? वाह, ताकि ये लोग फिर हमारे सिपाहियों को मारें, हमसे लड़ाई करें। ओ, पकड़ जाओ, डाल दो इसको कालकोठरी में।
0: इस तरह रानी गाइडन ल्यू ने अपनी परवाह किए बिना अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती दी। इस नौजवान लड़की को जेल में बंद कर दिया गया और उस पर मुकदमा चलाया गया। उसने 14 साल काल कोठरियों में बिताए, जहां उसे भयंकर यातनाएं दी गईं। 1939 में जब नेहरू जी ने पूर्वी भारत के प्रदेशों का दौरा किया तो गाइडन ल्यू के बारे में सुनकर वो अपने आप को रोक नहीं सके और उन्होंने कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब वो जेल से आजाद होंगी और पूरा देश उन्हें याद करेगा। बच्चों, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। के स्वतंत्र होने के साथ ही रानी गाइडन लियो को भी आजाद कर दिया गया। आगे चलकर उन्होंने अपने को समाज सेवा में लगाया। उन्होंने फरक्का नाम का एक धार्मिक आंदोलन भी चलाया जिसका अर्थ होता है पवित्र। अठहत्तर वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। रानी गाइडन लियू को भारत सरकार ने कई पुरस्कारों से सम्मानित किया, उनमें से ताम्रपत्र, पद्म भूषण एवं बिरसा मुंडा पुरस्कार आदि हैं। उनको हमेशा याद रखने के लिए भारत सरकार ने 1996 में 1 रुपए का डाक टिकट चलाया। सन 1999 में भारत सरकार ने देश की 5 प्रसिद्ध महिलाओं के नाम पर स्त्री शक्ति पुरस्कार की स्थापना की, जिनमें रानी गाइडन लियू ज़िलियांग का नाम भी शामिल है। नागालैंड की जॉन ऑफ आर्क कही जाने वाली रानी गाइडन लियू भले ही इस संसार में नहीं है, परंतु वो प्रत्येक भारतीय के हृदय में रानी के रूप में सम्मानित रहेंगी।
8: अरे रामू काका।
9: नमस्ते टीचर जी।
8: नमस्ते, कैसे हो? बड़े दिनों से दिखाई नहीं दिए।
9: बस ठीक हूँ।
8: अरे क्या हुआ? बहुत दिनों से आपकी बिटिया कमला स्कूल में नहीं दिखाई दे रही। वो तो अच्छी भली 6ठी कक्षा में पढ़ रही थी।
9: क्या बताऊं टीचर जी, उसकी माँ बहुत बीमार हो गई थी।
8: अरे
9: कमला ने दिन रात उसकी सेवा की। अब उसकी माँ की तो तबीयत ठीक हो गई, मगर उसका स्कूल छूट गया बेचारी का।
8: अरे
9: अब वो बड़ी भी हो रही है, उसे दूर स्कूल भेजते डरता हूँ टीचर जी।
8: कैसी बातें करते हो रामू काका। इसका भी एक हल है, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय।
9: कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय,
8: जहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे वाले वर्ग की लड़कियों का दाखिला किया जाता है। बस लड़की का 5वीं पास होना जरूरी है और तुम्हारी बेटी तो 5वीं पास कर चुकी है
9: जी।
8: लड़कियां वहीं रहकर पढ़ती हैं, उन्हें दूर इलाकों से रोज आना जाना भी नहीं पड़ता।
9: अब वो तो ठीक है टीचर जी, सिर्फ दाखिले से क्या होगा? खाना पीना, कपड़े, किताबें।
8: अरे तुम्हें ये सब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं रामू काका, क्योंकि ये सब मुफ्त में दिया जाएगा।
9: क्या? हाँ, मुफ्त में दिया जाएगा।
8: और जब तुम्हारा मन करेगा उससे मिलने का तो मिल भी लिया करना।
9: अच्छा हाँ। तो क्या टीचर जी, मेरी कमला फिर से पढ़ सकेगी ना?
8: हाँ, और एक दिन आत्मनिर्भर भी बनेगी।
9: अच्छा धन्यवाद टीचर जी, मैं कल ही उसका दाखिला करवाता हूँ।
8: अरे कल क्यों, आज।
9: अच्छा टीचर जी, आज ही करवाता हूँ।
8: पढ़े बालिका करे उजियारा, खुशहाल बने संसार हमारा।

बहादुरी एक ऐसा गुण है जो हमें जीवन में मुसीबतों से लड़ने की प्रेरणा देता है। 14 वर्ष की पिंकी भी ऐसे बच्चों में से एक थी जो संकट की घड़ी में अपना धैर्य न खोकर बहादुरी का परिचय देते हैं। 1998 के राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित इस बालिका के बलिदान की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हरियाणा राज्य की पिंकी ने न सिर्फ 5 बच्चों की जान बचाई बल्कि दुनिया के सामने अद्भुत शौर्य और धैर्य की मिसाल भी पेश की। आओ सुने पिंकी के बलिदान की कथा।

0: खेलेंगे।
1: आज तो बहुत मजा आया,
2: जम्मू चलो
1: खेलेंगे।
2: अरे पिंकी, आज तो तुमने अपनी धाकी जमा ली।
1: अरे सहेली किसकी है
3: भाई, मैंने तो मास्टर जी को वही बताया जो मुझे आता था,
4: पर हमको तो नहीं आता था।
1: अरे उत्तर तो मुझे भी आता था पर मैं कुछ बोल ही नहीं पाई।
3: अच्छा तो ये कमजोरी थी तुम्हारी भाई, कक्षा में झिझकने से तो बात नहीं बनती। क्यों?
2: ये तो ठीक है, अब देखना कक्षा में मैं भी जवाब दूंगा।
3: अच्छा चलो चलो घर चले।
5: चलो चलो बच्चों, चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो। हाँ एक दो तीन, अरे भाई पिंकी चलो जल्दी करो।
6: धीरे धीरे मेरा दीपक। अरे भाई हरीश, सभी आ गए बस में,
5: देखता हूँ उस्ताद शायद आ गए सब। अरे ठहरो ठहरो,
3: रुको रुको ड्राइवर भैया, शंभू चढ़ रहा है, उसके पैर में चोट लगी है, रुको भैया।
5: अरे घबराओ नहीं पिंकी, जब सब चढ़ जाएंगे तभी चलाएंगे भाई बस।
3: आओ चलो चलो चलो आओ इधर बैठो।
5: आराम से चलो चलो चलो चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश। हाँ भाई ड्राइवर साहब, अब चलाओ गाड़ी।
6: हाँ जी अभी लो।
5: ठीक है मैं भी आ जाता हूँ तुम्हारे पास ही।
3: अच्छा सुनो, मैं गीत गाती हूँ और तुम सब ताली बजाना।
2: हाँ भाई, पर ताली तो बाद में ही बजेगी ना।
1: अरे बुद्धू, गाने के साथ साथ बजानी
2: है। अच्छा अच्छा ठीक है भाई ठीक है।
1: चलो पिंकी शुरू हो जाओ।
3: बजे समय

0: पहली बस अपने रास्ते की ओर बढ़ी चली जा रही थी कि तभी पिंकी ने देखा कि बस के अंदर एक कोने पर रखी बैटरी के ऊपर डिब्बे में से छलक कर पेट्रोल गिर रहा है। पिंकी ने सोचा कि पेट्रोल से तो आग भी लग सकती है। फिर बच्चों ने आवाज लगाकर ड्राइवर और कंडक्टर को बताने की कोशिश की।
1: ड्राइवर भैया, भैया देखो बैटरी पर पेट्रोल गिर रहा है।
0: लेकिन बच्चों और इंजन के शोर में ड्राइवर और कंडक्टर सुन नहीं पाए कि तभी
1: अरे अरे नेहा देखो देखो आग बैटरी पे बैटरी पर बैटरी पर ये देखो आग। अमित अमित चलो चलो चलो राकेश प्रवीण सब और पूनम कहाँ है? हाँ शंभू आग तो बढ़ती ही जा रही है।
2: अरे उस्ताद गाड़ी रोको। उस्ताद गाड़ी रोको, गाड़ी में आग लग गई है।
3: हैं आग
1: किसे बोलते हैं?
3: मैं रोकता हूँ गाड़ी अभी।
2: हाँ तुम जल्दी से लोगों को मदद के लिए लाओ, पानी का इंतजाम करो, मैं यहाँ बच्चों को बचाने की कोशिश करता हूँ। अरे जो आग बढ़ती जा रही है। अरे मुझे पकड़ाओ, अरे पिंकी बेटा इसको मुझे पकड़ा दो। अरे तुम्हारे कपड़ों में आग लगी है, अरे जल्दी बाहर आओ पिंकी, बाहर आओ, तो तुम्हारे कपड़ों में आग लग गई है।
1: नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, पहले पूनम को पकड़ो। अमित अमित देखो, पहले पूनम को।
2: अरे मुझे पकड़ाओ, अरे पिंकी बेटा तुम मुझे पकड़ाओ जल्दी से। बाहर आओ, पहले देखो तुम्हारे आग लगी है, जल्दी आओ।
1: बच्चे के कपड़ों में आग लगी हुई है, बस के अंदर बच्चों को बाहर निकाल लिया, देखो तो। अरे उसकी मदद करो।
4: अरे दमकल को
3: बुलाओ, फोन करो ना जल्दी से, बच्चे हैं छोटे छोटे।
4: अरे दमकल को बुलाओ ना भाई,
3: जल्दी बुलाओ ना जल्दी।
0: आग में घिरी बस में से बच्चों को निकालते निकालते भी छह बच्चों ने आग में झुलस कर वहीं दम तोड़ दिया। ये संख्या बढ़ भी सकती थी, किंतु अदम में साहस और वीरता का परिचय देते हुए पिंकी ने पांच बच्चों को मौत के मुंह से बाहर निकाल ही लिया। दुर्भाग्य से इस हादसे में पिंकी अपने आप को आग की चपेट से नहीं बचा सकी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। पिंकी के इस वीरता पूर्वक बलिदान के लिए उसे मरणोपरांत गीता चोपड़ा पुरस्कार मिला। वर्ष 1998 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के प्रधानमंत्री ने दिल्ली में पिंकी के अभिभावकों को ये पुरस्कार प्रदान किया। वाकई ऐसे बच्चे हमारे देश हमारे समाज की शान हैं।

0: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: हंगला किसान भाइयों हूँ एक बार फिर थी बहुत बहुत स्वागत करूँ से रेडियो टांडिया भील 90.8 FM पर। रेडियो टांडिया भील 90.8 FM नू यूं खेतीवाड़ी कार्यक्रम हापड़ हंगला किसान भाइयों हरू है। हंगला किसान भाइयों ने खेतीवाड़ी की जो भी समस्या है तीनों निदान करवा हरू यू कार्यक्रम अब हूँ सलाड़ी रहा है ताकि आपड़ो किसान है वो अलग अलग प्रकार की खेतीवाड़ी ना बारा में जाने अने जो दिन प्रतिदिन अपनी जो खेती है अपनी जो कृषि भूमि है तिनमा बदलाव आवी रह्यो है अपना वातावरण में अपना पर्यावरण में जो बदलाव आवी रह्यो है तिना बदलाव ने देखता अगर आप देखी तो अपनी जो जगह है और धीरे धीरे भट्टाती जा रही है तो इनो हूँ कारण से अने ये प्रकृति में जो बदलाव आवी रह्यो है इनो हूँ कारण से तो इन हंगली जानकारियों ने आप खेतीवाड़ी कार्यक्रम माध्यम से जाणू केम ये समस्याएं आवे है अपना खेतरों में अने इनी समस्या नो हूँ समाधान है तो इनती जोड़ेली हजू भी घनी जानकारियों ने आपूँ जैसे कि अलग अलग फसलों ने खेती करी है तो कई नी फसल नी खेती आप झाबुआ जिला में करवी जोवे अने कई नी फसल अपना झाबुआ जिला ना वातावरण ना अनुकूल से ते भी जानकारी आपूँ इना खेतीवाड़ी ना कार्यक्रम ना माध्यमता ले हूँ। साथ ही अगर कहीं भाई है वो अलग प्रकार की खेती करवा मांगे है तो त्यों भाई भी आप केवी के कृषि विज्ञान केंद्र ना माध्यम से भी अलग अलग प्रकार की कृषि ना बारा में ट्रेनिंग ली सके अने खुद नहीं आप खुद ना खेतर में इना नवी नवी फसलों की खेती करी सके। साथ ही हमून खुशी है कि घना खरा किसान भाई अपना इना रेडियो चैनल ने सांभळे है अने इना कार्यक्रम थी घणो लाभ ले है। साथ ही जेना भी किसान भाई ने नानी मोटी तकलीफ आवे है अपना खेतरों में जेम के कदी कदी अपन इल्लर नी दिक्कत आवे अपना पौधा में फूलों नहीं आवे ते समय समय पर खेती में अलग अलग प्रकार की दवाइयों की जरूरत पड़े है तो हम केवी दवाइयाँ नाखवी जोवे केतरी मात्रा में नाखवी जोवे या फिर हम नाखवी जोवे कि नहीं जोवे इनी हंगली बातों की जानकारी आपूँ इना खेतीवाड़ी कार्यक्रम माध्यम थी लिए से तो मारा हंगला किसान भाइयों थी मारू निवेदन है कि आप रोज हाजे 6 થી 8 વાગે तक इना कार्यक्रम ने सांभळवानुं अने खेतीवाड़ी की जो भी समस्या है तीन भी तमो हमारी तक फोन ना माध्यम थी अने हमारा रेडियो स्टेशन पर आवीन भी इनी जानकारी आली सको। साथ ही हमारा हमू भी अपर किसान भाइयों ने वसमा आया करी है तो किसान भाइयों की जो भी समस्या है खेती बाड़ी ने ली ने अपड़ जो भी फसल में जो भी तकलीफ आवे है तिनी जानकारियों ने हम कोशिश करी है कि केवी की ना माध्यम थी तिनी हूँ निदान करी सकी तिनमा हूँ बदलाव करी ना अपनी जो फसल है ते वसी जाए तिनों भी हम प्रयास करी है। तो आजना इना खेतीबाड़ी कार्यक्रम ने आपूँ यहाँ थी शुरुआत करी है और आजना इना कार्यक्रम में भी आपूँ जाणू खेतीवाड़ी थी जोड़ेली हजू महत्वपूर्ण बातों अने आजना खेतीवाड़ी कार्यक्रम में आपूँ जाणी के पौधा जो अपना पेड़ है पेड़ों ना जो अपन फल लागे है तेनी फलू थी कहीं नी किकम तरीके थी आपूँ फलों की खेती कर पेड़ों थी कहीं नी कमाई आपूँ ली सकी। तो किसान भाइयों आजना इना कार्यक्रम की शुरुआत करी अने जाणी किकम आपूँ पेड़ों थी अलग अलग प्रकार थी इनथी भी आप आय नो जो स्त्रोत है तीन आप बढ़ा सकी आप कमाई नो एक नवो आधार यो किकम थी बनी सके।

0: आज के कार्यक्रम में चर्चा का विषय है पेड़, पैसा और पर्यावरण। जी हाँ, पैसे पेड़ पर लगना कभी कहावत रहा होगा, अब तो वास्तव में पैसे पेड़ पर लग रहे हैं और इससे पर्यावरण की रक्षा भी हो रही है। जब पेड़ पर पैसे लग सकते हो तो किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने में लगी सरकार इसे बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। खेती के साथ पेड़ पौधों का तालमेल बैठाकर किसानों को ज्यादा लाभ दिलाने के साथ प्रदूषण पर पहरा लगाने का प्रयास ही है कृषि वानिकी। वन प्रकृति के वस्त्र हैं और हमारी जीवन रेखा, साथ ही किसानों की आमदनी का अतिरिक्त स्रोत भी है। कृषि वानिकी में जमीन का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग कर किसानों, खासतौर से छोटे किसानों की आय किस तरह बढ़ाई जा सकती है, उस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, आइए देखते हैं।
1: कृषि को तीन हिस्सों में बांट के चलना चाहिए। एक तिहाई जो आप परंपरागत रूप से करते हैं वो खेती, एक तिहाई एनिमल हस्बेंड्री, चाहे आप गाय रखे, भैंस रखे, दूध का उत्पादन करें, मुर्गी रखे, अंडे रखे, लेकिन एक तिहाई उसके लिए आपकी ताकत लगाइए और एक तिहाई आप अपने ही खेत में टिम्बर की खेती करें, पेड़ उगाए, जिससे फर्नीचर के लिए जो लकड़ी लगती है ना वो बने। आज हिंदुस्तान को टिम्बर इंपोर्ट करना पड़ रहा है, जंगल हम काट नहीं सकते, तो उपाय यही है और उसके लिए भी जमीन खराब करने की जरूरत नहीं है। आज हमारे देश की हजारों लाखों हेक्टेयर भूमि कहां बर्बाद हो रही है। दो पड़ोसी किसान हो, एक तो हमारे देश में सब छोटे किसान है, बड़े किसान हमारे देश में नहीं है, छोटे किसान है, और हमारे देश का पेट भरने का काम भी छोटे किसान करते हैं, बड़े किसान नहीं करते, छोटे किसान करते हैं। दो तीन बीघा भूमि है पड़ोसी के पास, तीन बीघा दोनों भाई हैं, लेकिन बीच में ऐसी दीवार बना देते हैं, बाड़ लगा देते हैं कि दो तीन मीटर उसकी जमीन खराब होती है, दो तीन मीटर इसकी खराब होती है। सिर्फ इसी के लिए अगर एक बार बाढ़ में से हम बाहर आ जाएं और अगर पेड़ लगा दे, एक पेड़ इस वाले का, एक पेड़ उस वाले का, एक इसका एक उसका, और आधे उसके आधे इसके, आप मुझे बताइए जमीन बच जाएगी नहीं बच जाएगी। लाखों एकड़ भूमि आज बर्बाद हो रही है। मैं किसानों से आग्रह करता हूं कि अड़ोस पड़ोस में अपने भाई हो या और कोई हो, दो खेतों के बीच जो बाढ़ में दो दो पांच पांच सात सात मीटर जमीन खराब होती है उसकी जगह पे पेड़ लगा दें, और वो भी टिम्बर, और सरकार आपको परमिशन दे, आपके घर में बेटी पैदा हुई हो पेड़ लगा दीजिए, बेटी की शादी हो पेड़ काट दीजिए, शादी उतने ही खर्चे में हो जाएगी।
0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस संदेश में मोटे तौर पर दो बातें कही हैं। खेती से बची लाखों एकड़ भूमि बर्बाद हो रही है, उस पर छोटे किसान पेड़ लगाकर उसका सदुपयोग करें और शादी जैसे बड़े खर्चों के लिए आमदनी बढ़ाएं। इसका देश को फायदा ये होगा कि हम लकड़ी के आयात पर होने वाला मोटा खर्च घटा पाएंगे, और यही कृषि वानिकी है।

0: देश के अधिकांश हिस्सों में खेती काफी हद तक बारिश पर निर्भर है। जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश भी बेवफासी हो गई है, इसलिए खेती में किसानों को भारी जोखिम उठाना पड़ता है। कृषि वानिकी का मकसद यही है कि मौसम की मार से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई पूरी नहीं तो काफी हद तक खेत के चारों ओर या फसल के बीच में विधिवत लगाए गए पेड़ पौधों से हो सके। अगर फसल में कोई नुकसान नहीं हुआ है तब तो सोने पे सुहागा। पेड़ किस तरह के लगाए जाएं ये निर्भर करता है मौसम और मिट्टी की गुणवत्ता पर। कृषि वानिकी का मकसद यही पूरा नहीं होता, इसमें जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की भी क्षमता है। इंसान सांस के जरिए वही ऑक्सीजन लेता है जो दिन की रोशनी में पेड़ छोड़ते हैं। इंसान जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है उसे पेड़ ग्रहण कर लेते हैं और पर्यावरण को बिगड़ने नहीं देते। इसके अलावा पेड़ प्रदूषण फैलाने वाले कई तरह के तत्वों से हमारी हिफाजत करते हैं। वे हमें धूल, गंदगी और भौतिक वायु प्रदूषण से बचाते हैं, यानी पेड़ हवा को शुद्ध करने का काम करते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि एक हेक्टेयर घना वन करीब 50 टन धूल साफ कर देता है और उसके बुरे असर से हमारी हिफाजत करता है। पेड़ों से ध्वनि प्रदूषण भी नियंत्रित किया जा सकता है। पेड़ मिट्टी का क्षरण रोकते हैं और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बरकरार रखते हैं। फसलों के साथ लगाए गए पेड़ न केवल पर्यावरण सुधारने में अहम भूमिका निभाते हैं बल्कि देश में लकड़ी की करीब 65% जरूरत भी पूरी करते हैं। इन सारे फायदों को देखते हुए 1988 में बनाई गई राष्ट्रीय वन नीति में लक्ष्य तय किया गया वन क्षेत्र 33% तक बढ़ाया जाएगा, जो इस वक्त 25% से भी कम है। इस लक्ष्य को पूरा करने का एकमात्र विकल्प कृषि वानिकी है।
1: अभी आपने रिपोर्ट देखी, ये भी देखा कि कृषि वानिकी ऐसी औषधि है जो खेती और पर्यावरण की कई बीमारियों का इलाज करती है। और हालिया रिपोर्ट के अनुसार तो प्रदूषण की वजह से हर साल इस देश में 12 लाख लोगों की मौत हो जाती है। चलिए इस विषय को और भी बेहतर तरीके से समझते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। राकेश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि पेड़ों की बात हो रही है और पेड़ तो हमारी परंपरा संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि जो आज की स्थिति है उसको देखते हुए आप हमें समझाएं कि इस पर जोर देना पड़ा कि जो कृषि वानिकी है उसे किसान अपनाए, उस पर एक नीति लानी पड़ी।
2: अगर हमें पूरे चीजों को एक पर्सपेक्टिव में देखना है तो देखना पड़ेगा कि हमारे देश के इतिहास में जाना पड़ेगा जी। जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए, उनके यहाँ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, तो जो रॉ मटेरियल की आवश्यकता हुई उसमें ज्यादा से ज्यादा एक समझिए लकड़ी का यहाँ पर दोहन शुरू हुआ और काफी बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई हुई, जिसको कि लकड़ी वो बाहर ले गए, अपने देशों में ले गए जहां उसका उपयोग हुआ। ग्रेजुअली हमारी जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है और बढ़ती हुई जनसंख्या के हिसाब से काफी कुछ जंगल तो जब 60s में ग्रो मोर फूड प्रोग्राम के अंदर भी डाइवर्ट किया गया, और फिर पॉपुलेशन बढ़ते हुए जो एनिमल पॉपुलेशन जो हमारा है, कैटल पॉपुलेशन और आदमी का, दोनों का दबाव लगातार वनों के ऊपर बढ़ता गया जी। उसका परिणाम यह हुआ कि जहां जंगल करीब करीब फॉरेस्ट एरिया हमारे आज जो है 21% के आसपास सीमित होकर रह गए, जो हमारा भौगोलिक क्षेत्र है उसका जी। उसमें तरह तरह की विसंगतियां भी आई और जो हमारे घने जंगल थे, घने जंगल से वो थोड़े से कम घने जंगलों में परिवर्तित हुए और जो और खराब जंगल थे उनकी स्थिति और खराब हुई जी। और जब जमींदारी का उन्मूलन हुआ और जमींदारी उन्मूलन के बाद सरकार ने पूरी जमीन जो बड़े जंगलों वाले जमीन थे उसका अधिग्रहण किया कई राज्यों में, तो उस समय भी अंधाधुंध वनों की कटाई हुई जी। ये 50 के दशक की बात है। उसका सबका परिणाम ये हुआ और लगातार हम 30 आजादी के समय 30 करोड़ थे, आज 125 करोड़ है जी। तो सभी का दबाव का जंगलों के ऊपर, वनों के ऊपर प्रभाव पड़ा और जिसके और हमारी मांग भी बढ़ती गई, जंगल के जो उत्पाद है उसकी मांग बढ़ती गई है। और उन
1: तो रची मैं जानना चाहूंगी कि ये जो दबाव पड़ता गया जंगलों पर और वही मांग भी बढ़ती गई और वनों की जिस तरह से अंधाधुंध कटाई हुई उसका नुकसान किस तरह से हमें उठाना पड़ रहा है।
3: जो पेड़ जो होता है वो उसका पत्ते मिट्टी में उर्वरकता बढ़ाता है और उसका जो बहुत सारे जंगल के किस्म जो प्रोडक्ट है उसी में बहुत सारे गुजारे करते हैं स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स। तो पेड़ जो कम होता है जंगल के साथ साथ इवन जो हमारा खेती में भी जो था पेड़ वो भी कटाई होना शुरू हो गया, तो उसका बहुत कुप्रभाव पड़ा है सॉयल के लिए एंड एग्रीकल्चर के लिए।
1: जी जी जी रिजवी जी, आप भी हमें समझाए विश्व पटल को ध्यान में रखते हुए हमें बताएं कि कितना जरूरी है जो कृषि वानिकी है उस पर जोर देना।
4: देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत सरकार और कृषि मंत्रालय को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा क्योंकि भारत दुनिया का पहला देश है जिसने इस तरह की पॉलिसी बनाई और अब उस पॉलिसी का कार्यान्वयन हो रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात यह है कि जैसा कि सिन्हा साहब ने कहा कि जंगल कट गए हैं और रथ साहब ने बताया कि मिट्टी खराब हो रही है और वनों की रक्षा करना बहुत जरूरी है, तो कृषि वानिकी ही एक ऐसा रास्ता है जिस पे चल के हम एक तरफ तो अपने वनों को बचा सकते हैं और दूसरी तरफ जो जनता वनों के ऊपर निर्भर करती है उनको भी हम उनके हक से वंचित नहीं करेंगे। वो चीजें वो जो वन से लेते थे वो अब कृषि वानिकी के तरह से उनको मिलेगा। दूसरी बात यह है कि भारत सरकार ने बहुत सारी अच्छी योजनाएं चलाई हैं और कृषि वानिकी भारत में मैं कह सकता हूं कि विश्व में अगर ऊपर से 4-5 देशों का हम नाम लें तो उनमें भारत पहले या दूसरे नंबर पे आएगा कई चीजों में। जहां पे अभी और थोड़ा काम करने की जरूरत है हमें, वो जो कि हम भारत सरकार की कृषि मंत्रालय के साथ मिलके उस पे काम कर रहे हैं कि
1: हमने विस्तार से जानेंगे कि क्या कुछ काम इस दिशा में किए जा रहे हैं। सौजन्य जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं, बहुत ही पैनी निगाह रखते हैं सौजन्य जी की किस तरह से कार्य हो रहे हैं। तो सौजन्य जी, हमें ये बताएं कि आज की तारीख में अगर देखा जाए तो कृषि वानिकी के स्तर पर देश में क्या दशा है?
5: कृषि वानिकी का जो स्तर है अभी कुछ इलाकों में तो काफी अच्छा है, जैसे कि अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे और देखेंगे तो वहां आप पाएंगे कि यमुनानगर नाम का जो शहर है वो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है लकड़ी के लिए। लकड़ी का व्यापार बहुत है वहां पर और आसपास के जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, वहां से बहुतायत में लकड़ी की वहां पर सप्लाई होती है। इसमें ज्यादातर पॉपुलर जो स्पीशीज है वो वहां पर सबसे ज्यादा सप्लाई होता है। और ये भी कहा जाता है कि यमुनानगर देश भर में करीब 80% लकड़ी प्लाईवुड इंडस्ट्री के लिए सप्लाई करने के लिए जिम्मेदार है। तो अगर इस इलाके में देखा जाए तो कृषि वानिकी काफी फल फूलित रही है पिछले कुछ समय में, लेकिन अगर बाकी जगह की बात करते हैं तो इतना ज्यादा हमें मार्केट नहीं दिखता है कृषि वानिकी के लिए। इसके कारण किसान अक्सर परेशान रहते हैं कि वो ठीक है लकड़ी तो उगाते हैं लेकिन उसे बेचे कहाँ। अब यमुनानगर में भी स्थिति ये बनी हुई है कि पिछले 2014 से वहां पर लकड़ी की कीमतों में भारी गिरावट महसूस की गई। अब वहां पर किसान ये सोच के परेशान है कि अभी उन्होंने 5 साल पहले या 6 साल पहले जो पेड़ उगाए थे खासतौर से पॉपुलर के और कुछ हद तक यूकलिप्टस के भी, तो उसको अब बेचने के लिए वहां पर पर्याप्त उन्हें कीमत नहीं मिल पा रही है।
1: बिल्कुल, तो पर्याप्त कीमत नहीं मिल रही है और बाजार को लेकर भी एक समस्या है। राकेश जी, मैं ये बताएं यहाँ पर कि ये जो राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति आई है इसके साथ किस तरह का जो लक्ष्य है वो रखा गया है और इतने दिनों में किस तरह की प्रगति हुई है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
6: नहीं, राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति को लाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि कृषि वानिकी पे अभी किसी भी डिपार्टमेंट का स्पेसिफिक फोकस नहीं था भारत सरकार में
1: जी।
6: तो क्योंकि कृषि वानिकी एक तरह का जो है वो फार्मिंग सिस्टम है, उसको देखते हुए केंद्र शासन ने निर्णय लिया कि कृषि मंत्रालय इसको आगे लेके चलेगा और उस नीति के तहत सबसे पहले तो एक मुद्दा है कि कृषि वानिकी को एक प्लेटफॉर्म किस तरह दिया जाए, उसको आगे किसानों के बीच कैसे लोकप्रिय बनाया जाए, साथ साथ उसमें इस क्षेत्र में और जो भी विसंगतियां हैं जैसे कई सारे नियम कायदे कानून ऐसे हैं जो काफी पुराने हैं और वो कृषि वानिकी को सीधा इफेक्ट करते हैं, सीधा किसानों को इफेक्ट करते हैं। जैसे काटने की, अगर पेड़ लगाया तो उसको काटने की अनुमति के लिए उन्हें हर राज्य में राजस्व अधिकारियों के आगे राजस्व अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है, उसके अपने उसके कारण उसमें समय लगता है कि और किसानों को परेशानी भी होती है। दूसरा, उस लकड़ी को कहीं ले भी जाना है तो वन विभाग से अधिकांश लकड़ियों में पूरे देश में एक ट्रांजिट पास लेना पड़ता है। अब ट्रांजिट पास में भी एक राज्य में से दूसरे राज्य जाने पर हर स्टेट में उसको पासेज को बदलना है, तो कई तरह की विसंगतियां आती गई हैं। उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाई गई है और पॉलिसी बना करके कोशिश किया जा रहा है कि ये सारी जो विसंगतियां हैं जो किसानों को परेशानी है उस परेशानी को दूर किया जाए।
1: जी बिल्कुल, तो विसंगतियों को दूर करने का लक्ष्य भी रखा गया है। साथ ही रथ जी 33% का भी लक्ष्य रखा गया है और अब तक जो प्रगति हुई है उसे देखते हुए आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कब तक इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा?
3: नहीं देखिए, इसमें लक्ष्य तो एक्चुअली 33% वो तो पूरा एनवायरमेंट फॉरेस्ट का, जो हमारा जो फॉरेस्ट एरिया भी है नॉन फॉरेस्ट एरिया वो तो लक्ष्य है, पूरा देश का लक्ष्य है। हमारा जो लक्ष्य है, हम कृषि के एरिया के अंतर्गत लैंड एग्रीकल्चर लैंड में कैसे उस टारगेट को कंट्रीब्यूट करेंगे।
1: जी, क्या उसके लिए भी कोई खास लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि कृषि में कितने पेड़ों को लगाया जाना है?
3: अभी हमारा जो प्रोग्राम जो अप्रूव हुआ है इसमें करीब हम लोग लक्ष्य रखे हैं 4 लाख हेक्टेयर को अभी 4 साल के अंदर इसको कवर करना है।
1: जी,
3: उसके अतिरिक्त इतना हो सकता है जैसे कुछ फैलो लैंड लगा है उसमें ब्लॉक प्लांटेशन वगैरह कुछ हो सकता है, दूसरे कोई योजना के साथ और कोई कन्वर्जेंस के साथ भी कुछ अतिरिक्त एरिया भी लाने के भी प्रयास की जा रही है।
1: जी, तो ये जो 4 साल में 4 लाख पेड़ों का लक्ष्य रखा गया है उस दिशा में अब तक कहाँ तक हम पहुँच पाए?
3: 4 लाख हेक्टेयर का।
1: जी जी, तो उस दिशा में कहाँ तक पहुँच पाए हैं
3: अभी? तो ये 16-17 में ही प्रोग्राम का अप्रूवल मिला है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
3: ये अभी हम प्रोग्राम प्लानिंग कर रहे हैं सारे स्टेट को, हमें नर्सरी बनाना क्योंकि पेड़ का तैयार भी करना चाहिए, उसको सीडलिंग वगैरह नर्सरी तैयार करना है। अभी प्लानिंग प्रोसेस एरिया सिलेक्शन ये सारे हो रहा है, ये प्रथम साल है तो इस साल हम मोस्टली नर्सरी के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे और कहाँ कहाँ एरिया में प्रायोरिटी एरिया जहाँ जहाँ प्लांटेशन किया जा सकता है उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए कोशिश करें, नेक्स्ट ईयर से प्लांटेशन का काम शुरू किया जाएगा।
1: जी बिल्कुल, रिजवी जी अभी हमें बताएं, आप बता रहे थे कि किस तरह से जो आपकी संस्था है वो क्या कार्य कर रही है, हम और विस्तार से जानना चाहेंगे कि भारत में कृषि वानिकी को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास।

0: काम होना है वो ये है कि ये जो नर्सरी है और पौधे हैं ये कौन बनाएगा और किस तरह के पौधे बनेंगे, क्योंकि जरूरी सिर्फ ये नहीं है कि आप पेड़ लगाएं, जरूरी ये है कि किस तरह के पेड़ लगा रहे हैं आप, उनकी क्वालिटी क्या है
1: जी।
0: तो ये धान गेहूं नहीं है कि हमने लगाया और छह महीने में काट लिया। पेड़ लगाएंगे किसान तीन साल चार साल वेट करेगा, फिर उसको पता लगेगा कि इसमें तो फल नहीं आ रहे
1: जी।
0: या उसने जिस काम के लिए लगाया था वो उसको नहीं मिल रहा है। तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर हम लोग इस पे काम कर रहे हैं कि इसकी क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, इसका क्वालिटी कंट्रोल कैसे हो और कैसे क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल जो है वो किसानों तक पहुंचाया जाए। तो एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है जो हो रहा है और इसको और बड़े स्केल पे करना है। दूसरी बात
1: जी, क्या आपने भी पाया किसानों में किसी तरह की झिझक है इस बात को लेकर?
2: किसानों में थोड़ा कंफ्यूजन जरूर है कि अगर, पहली बात तो ये इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि उनको कीमत क्या मिलेगी।
1: अच्छा,
2: ये उनको मन में एक भय भी है कि हम पांच साल मेहनत करें, इतना इन्वेस्टमेंट करें उसमें, उसके बाद अगर हमें कीमत नहीं मिली तो फिर हम अपना जो हमने जो लगाई है, जो पैसा लगाया है, वो कैसे वापस मिलेगा
1: जी।
2: ये सबसे बड़ा उनके सामने एक सवाल है। दूसरी चीज ये है कि जैसे कि मैंने शायद पहले भी कहा कि मंडी का ना होना, आसपास मार्केट का ना होना एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में आया है
1: जी।
2: उसके अलावा सेना जी ने भी बताया कि जैसे कि ट्रांजिट पास का प्रॉब्लम है। यमुनानगर में मुझे खासतौर पर देखने को मिला, जहां मुझे ये बताया गया कि पहले ट्रांजिट पास की जो वैल्यू थी, उसे मंडी समिति शुल्क भी कहते हैं, वो पहले 35 रुपये पर टन था, अभी बढ़ के 75 रुपये पर टन हो चुका है। तो ये सारी समस्याओं से किसान अभी जूझ रहे हैं। दूसरी बात है पानी की समस्याएं भी होना, जैसे कि एक काफी अच्छा उदाहरण मुझे बुंदेलखंड में देखने को मिला। वहां पर करीब 33 एकड़ में एक किसान भाई ने यूकेलिप्टस की फार्मिंग की हुई है।
1: अच्छा।
2: और ये उनका खुद का इनिशिएटिव है, हालांकि उन्हें काफी मदद मिली, आर्थिक मदद अपने रिलेटिव्स से मिली।
1: अच्छा।
2: लेकिन उनका कहना था कि अगर यहाँ पर मार्केट होता तो और किसान भाई भी इससे इंस्पायर होते
1: जी।
2: और वो शुरू कर सकते थे कृषि वानिकी को।
1: बिल्कुल। तो सिद्धांत साहब, हम देख रहे हैं कि अलग अलग एजेंसियां जो है वो इस दिशा में काम कर रही है, उनके अपने कुछ परिणाम जो निकल कर आए हैं उसके बारे में भी वहां भी पता होता है, लेकिन क्या इस तरह से जो सभी एजेंसियां हैं उसके बीच एक तालमेल हो, क्या उसका भी कोई तंत्र है?
3: नहीं, समन्वय स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने एक अपना जो है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बना रखा है अपने स्तर पे, भारत सरकार के स्तर पर, जिसमें सचिव कृषि की अध्यक्षता में एक समिति है जिसमें जितने भी जो विभाग इसमें काम कर रहे हैं उनके प्रतिनिधि भी हैं, साथ में इकराफ के प्रतिनिधि हैं जो यहां विश्व वानिकी केंद्र के भी प्रतिनिधि हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के प्रतिनिधि हैं और एनजीओज के भी लोगों को रखा गया है, और जिससे कि एक समन्वय राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाए और एक दिशा, एक निर्देश कार्यक्रम को एक दिशा दी जा सके। जहां तक क्षेत्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर व्यवस्था है तो वहां जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कमेटी है जिसमें, क्योंकि जिलाध्यक्ष एक फोकल प्वाइंट है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में और सारे कार्यक्रम वहीं पर कन्वर्ज करते हैं, तो वहां पे किस योजना से कहां पर क्या लगाया जाना है इसकी पूरी की पूरी रणनीति तैयार करके और उसको विभिन्न विभागों के माध्यम से, जिनके पास भी बजट उपलब्ध है और कृषि वानिकी की राशि भी राज्य सरकार डिसाइड करती है किस विभाग से कराना है, वहां पर जाकर के एक कन्वर्जेंस के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने की बात की जाती है
1: जी। तो ये एक अच्छी पहल हो रही है कि तमाम तरह की एजेंसियां एक साथ काम कर रही है और एक तंत्र तैयार किया जा रहा है ताकि सभी अपनी जानकारियों को साझा कर सके और उसी के आधार पर आगे की भी रणनीति तैयार करें।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
5: आज ये कोहड़ी लेन कैसे चलियो भाई?
6: लाकड़ा वाटवान का हो भाईयो
5: ऊपर थोड़ी बार मारी बात हमल ले पंजाब दे।
6: अरे नीले नीले बयर वाट दे रोटा हमने कर लिया बालवानो गरीबी ने मलाई।
5: ओहो।

0: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: दुष्प्रभावों से निपटने के लिए एक ही रास्ता है, पेड़ लगाना। कृषि वानिकी यानी खेती के साथ साथ पेड़ पौधे लगाना इसका सबसे अच्छा रास्ता है। केंद्र सरकार कृषि वानिकी को बढ़ावा देने की पुरजोर कोशिश कर रही है। 10 फरवरी 2014 को केंद्र सरकार ने दुनिया में सबसे पहले राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति लागू कर बढ़ते तापमान की समस्या से निपटने की अपनी प्राथमिकता जाहिर की। राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति लागू होने से किसानों की कई दिक्कतों का समाधान हुआ है। कृषि वानिकी पर व्यवस्थित तरीके से काम 1983 में शुरू हुआ, जब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बाकायदा इस पर रिसर्च शुरू की, और फिर 1988 में झांसी में कृषि वानिकी के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई। कृषि वानिकी में आमतौर पर इमारती लकड़ी या दूसरे कामों में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी के पौधे लगाए जाते हैं। इनमें यूकेलिप्टस और पॉपुलर काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन किसान आंवला, अमरूद, नीम या फिर दूसरे पेड़ भी लगा रहे हैं। अलग अलग राज्यों में मौसम अलग अलग है, मिट्टी की गुणवत्ता भी अलग अलग है, इसलिए वैज्ञानिकों की राय पर किसान पेड़ भी अलग अलग लगाते हैं। आंवला, अमरूद, नीम या फिर दूसरे पेड़ों को बहुत ज्यादा देखभाल की भी जरूरत नहीं होती और अतिरिक्त आमदनी भी अच्छी हो जाती है। एक हेक्टेयर खेत की मेड़ पर आंवले के पेड़ लगा दिए जाएं, तो इनसे हर साल 30 से 60 हजार रुपए की अतिरिक्त आमदनी ली जा सकती है। इसी तरह अमरूद से 6 हजार तक और नींबू से 10 से 12 हजार रुपए तक की आमदनी हो सकती है।
2: तो अब ये आपने ये रिपोर्ट देखी, दुनिया में भारत पहला देश है जिसने राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति लागू की है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय दुगनी करने के लिए कृषि वानिकी को भी बढ़ावा देना चाहते हैं। सिन्हा जी, ऐसे में हमें ये बताएं कि पिछले 2.5 सालों में पहले की तुलना में किस तरह के परिवर्तन आए हैं?
3: पिछले 2.5 सालों में अभी अगर हम देखें तो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस काफी आ रहे हैं, जैसे कि कई राज्यों ने अपने जो है ट्रांजिट रूल्स पे काफी सारा सुधार किया है। जैसे मध्य प्रदेश में जहां पहले सिर्फ 6 प्रजाति के वृक्षों की लकड़ी को आप बिना किसी ट्रांजिट पास के ले जा सकते थे, आज की स्थिति में उन्होंने 58 प्रजाति को बाहर कर दिया है। तमिलनाडु ने इसी तरह 36 प्रजातियों को बाहर किया, गुजरात ने करीब 78 प्रजातियों को बाहर कर दिया है, और इस तरह कई राज्य लगातार जो है उनके साथ बातचीत करके जिससे किसानों को लकड़ी के ट्रांजिट पास के लिए कहीं भटकना ना पड़े, सीधा वो लकड़ी अपना काटे और जहां जिस मंडी में उनको बेहतर मूल्य मिले वहां जाके बेच सकते हैं। तो ये तो एक मुद्दा है। दूसरा है कि सभी लोग जो है अब ये बात करने लगे हैं कि इसको किस तरीका से अधिक फ्रीडम दिया जाए, फ्री करके, ताकि इसका जो हम इम्पोर्ट बहुत बड़ी मात्रा में लकड़ी का इम्पोर्ट हमारे यहाँ बढ़ते जा रहा है, तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए इसका यूज कैसे किया जाए। आज भी आप देखिए कि जो यहाँ की डिमांड है लकड़ी की, उसके 65% डिमांड जो है वो कृषि वानिकी आउटसाइड फॉरेस्ट से ही मीट आउट कर रहा है, और इम्पोर्ट बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके लिए स्कोप बहुत ज्यादा है। और इसे देखते हुए और इसी को देखते हुए मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो हमने अभी विश्व समुदाय के सामने

0: आपके एक नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है.
1: अच्छा.
0: जो क्लाइमेट चेंज का को रोकने के लिए, क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट करने के लिए प्रोग्राम चल रहा है. उसमें हमारा एक एकीकृत कृषि रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को बढ़ावा दिया जाता है. तो 2-2.5 साल में हम एक, जब से हमारा ये पॉलिसी आया है नेशनल एग्रोफॉरेस्ट्री पॉलिसी, हम उसके अंतर्गत भी ये इसको प्रमोट करने के लिए काफी प्रयास किए हैं. लास्ट 2-2.5 साल में करीब 30,000-40,000 हेक्टेयर इसके अंतर्गत आया, जिसमें हॉर्टिकल्चर भी है, कुछ मेडिसिनल प्लांटेशन भी है, वुड बेस प्लांटेशन भी है, वो सब शुरू किया गया है.
1: जी.
0: बाकी जो आप ये कर रहे थे, जो किसान का इनकम के बारे में जो है, क्योंकि मेन जो समस्या जो है, बारिश का आजकल इतना परिवर्तन हो रहा है, कभी टेम्परेचर का वृद्धि हो रहा है, कभी बीच में ड्राई स्पेल बहुत हो रहा है, तो कभी कभी छोटा किसान का जब खेत क्रॉप जब डैमेज हो जाता है, उसको कुछ नहीं मिलता है.
1: जी.
0: ये जब खेत में कुछ बाकी कुछ हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन हो या ट्री बेस कुछ है, उसको एटलीस्ट कुछ तो इनकम मिल जाता है उसके अंतर्गत, तो ये उसका सहायक होता है. एंड उसके अंदर सॉइल में भी जो ऑर्गेनिक मैटर का वृद्धि होता है, कार्बन कंटेंट वृद्धि होता है, उसका पोरोसिटी इंप्रूव होता है, वो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी जो बढ़ावा करता है क्रॉप के लिए, वो प्रोडक्शन वृद्धि करने में भी सहायक होता है.
1: बिल्कुल. यानी कि कई तरह से ये किसानों के लिए लाभदायक है. तो सिन्हा जी, ये बताएं कि ऐसे में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि वो पेड़ लगाए, पैसे बनाए, इसके लिए सरकार की तरफ से क्या प्रयास हो रहे हैं?
2: अभी सबसे पहले तो हम लोगों ने अभी एक जो है स्कीम, कृषि वानिकी पर स्कीम लेके आए हैं, और कृषि वानिकी स्कीम के तहत ये प्रावधान है कि अगर किसान अपने पेड़ लगाता है, या मेड़ पे पेड़ लगाए, या फिर वो अपनी कृषि के साथ बीच में पेड़ लगाए, या फिर पूरे सिर्फ पेड़ ही पेड़ लगाए, जहां वेस्टलैंड है, जहां खेती नहीं हो सकती है, वैसी भी जमीन लोगों के पास है, उसमें लगाए, तो सबके लिए अलग अलग इंसेंटिव्स दिए गए हैं, और ये इंसेंटिव हर साल के ऊपर है, और एक पेड़ के ऊपर समझिए कम से कम 4 साल में एक किसान को ₹35 सरकार अपनी ओर से प्रदाय करेगी. और ये अगर ब्लॉक प्लांटेशन करेगा तो करीब उसमें 25-30 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर तक उसको जो है सरकार की ओर से देने का प्रावधान किया गया है. तो ये सिर्फ ये हुआ जो आप लगाएं और पैसा पाएं, जो आप काट करके बेचेंगे वो अलग से आपको मिलेगा, वो आपका तो है ही है, उस पर किसी का दूसरे का राइट नहीं है, उससे आमदनी अलग होगी, लेकिन ये अपने आप में एक आमदनी का एक और स्रोत हो गया स्कीम जो है.
1: तो सहजानी जी, आपको क्या लगता है कि इस तरह से जब सरकार की तरफ से भी प्रोत्साहन मिलेगा, तो उसका कितना फायदा उठाएंगे किसान?
3: सरकार की तरफ से अगर प्रोत्साहन मिलेगा तब तो कोई शक नहीं है कि किसान इसका बहुत फायदा उठा सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि मैसेज किसानों तक पहुंचेगा कैसे. और एक और चीज, अगर आप एक पेपर की तरफ ध्यान दें, नेशनल एग्रोफॉरेस्ट्री पॉलिसी के ऊपर ही निकला है, उसमें एक खास बात निकल कर आई है कि CPR जो होता है, कॉमन पूल रिसोर्सेज या कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, उसके ऊपर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल एग्रोफॉरेस्ट्री पॉलिसी में, उसमें कोई ज्यादा जिक्र उसका है नहीं, जबकि CPR मैनेजमेंट किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत ही अच्छा जरिया होता है. तो अगर सरकार इस विषय पे भी ध्यान दे और CPR को भी प्रोत्साहित करे, और उसके थ्रू पब्लिक प्राइवेट मॉडल्स को लेकर आए, तो इसमें किसानों को बहुत फायदा हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा किसान कृषि वानिकी से जुड़ सकते हैं.
1: सिन्हा जी, सुझाव पर क्या कहना चाहेंगे आप?
2: कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज जो है, इसके कई सारे यूजेज हैं गाँव में, लेकिन जहां अगर किसान लगाना चाहते हैं वहां पे दूसरी योजना हैं जिससे वो लग सकता है. जैसे अभी मनरेगा के अंदर भी पेड़ लगाने के लिए पूरा का पूरा प्रावधान है, IWMP के अंदर प्रावधान है, तो ये अगर उस स्कीम के तहत वो वहां पे लगाए जा सकते हैं, और लग रहे हैं, इनफैक्ट हर साल लग रहे हैं. अगर हम देखें प्रोग्रेस देखें तो ट्री प्लांटिंग कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स पे हो रहा है. हम वहां इंसेंटिव इस तरह के नहीं है कि आपको सीधा मतलब पेड़ लगाएं और पैसा मिले, वहां पे आपको रोजगार उपलब्ध हो रहा है, उस रोजगार के थ्रू आपका एडिशनल इनकम प्राप्त हो रहा है.
1: जी. और साथ ही पेड़ लगाने की बात हो रही है तो पेड़ों के जुड़ाव की बात भी हो. रिजवी साहब, अगर इस देश में हम देखें तो हमने देखा है चिपको आंदोलन, पेड़ों को बचाने के लिए किस तरह की मुहिम चली है, तो पेड़ों से जुड़ाव रहा है लोगों का, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वन माफिया भी है जो पेड़ों को काटते हैं, आग लगाते हैं, इस तरह की स्थिति भी बनी हुई है. तो ऐसे में लोगों को जागरूक करना और उनको इस दिशा में प्रोत्साहित करना, ये कितना मुश्किल काम है?
4: देखिए, भारत जैसे मुल्क में ये बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए
1: जी.
4: क्योंकि एक तो ये बहुत पुरानी परंपरा है, और यहाँ के जो किसान हैं वो सदियों से पेड़ उगाते चले.

0: आ रहे हैं, ये कोई नई चीज नहीं है, वो उगाते चले आ रहे हैं। ये जो कृषि वानिकी की पॉलिसी है या जो शोध हो रहा है, ये ट्रेडिशनल नॉलेज और साइंटिफिक नॉलेज को मिला के उसको हम और इफेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नई चीज है। दूसरा, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं कहूंगा कि हमारे धार्मिक ग्रंथों को देखिए, उसमें पेड़ों की कितनी चर्चा हुई है। और अगर मैं कहूं कि कृष्ण भगवान कदम के पेड़ के नीचे ही बैठ के बंसी क्यों बजाते थे, तो उसमें एक मैसेज है और वो मैसेज लोगों के दिलों में है, वो ऐसा नहीं है कि लोग भूल गए हैं। और जो आपने चिपको आंदोलन की बात की,
1: बिल्कुल,
0: वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। अगर मैं कंपेयर करूं यहाँ की स्थिति को अफ्रीका की स्थिति से, वहां क्या हो रहा है कि वनों को काट के और खेती करने के योग्य बनाया जा रहा है। लोग वनों के अंदर रहते हैं और वो वनों को साफ करके खेती करते हैं, तो खेती वन के अंदर जा रही है। हम यहाँ भारतवर्ष में क्या हो रहा है, खेती के अंदर वन आ रहे हैं, तो बिल्कुल उल्टा है यहाँ पे। और ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि लोगों का लगाव पेड़ों से कितना ज्यादा है, क्योंकि न सिर्फ अपने खेतों में बल्कि अपने घरों के चारों तरफ भी वो पेड़ उगाते हैं। और अगर मैं बात करूं कि किसानों की इनकम की, तो एक चीज उसमें ऐड करना चाहूंगा जो सिन्हा साहब ने कहा और रथ साहब ने कहा, कि एक कार्बन मैकेनिज्म है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलता है, और वो कारखाने और इंडस्ट्री जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं उनको दिखाना होता है कि उन्होंने क्या ऐसा काम किया कि उनके द्वारा जो प्रदूषण हुआ है उसको उन्होंने कंट्रोल करने के लिए कोई स्टेप लिया। तो वो कार्बन बैंकिंग होती है, और भारत सरकार ने भी उस पर काम किया है, जिसमें एक किसान तो नहीं जा सकता कि मेरे पास 10 पेड़ हैं, मैं इतना कार्बन उसमें ले आ जाता है, उसके लिए मुझे पैसे दो। लेकिन अगर एक ग्रुप हो, एक कोऑपरेटिव हो और उसको सपोर्ट मिले, जैसे कि संस्था को हमारे मित्र रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग उनको हेल्प करते हैं और वो उसके बदले में भी उनकी इनकम बढ़ सकती है।
1: जी, तो ये इनकम बढ़ाने के लिए, आय बढ़ाने के लिए, रज जी क्या कुछ सुझाव अभी किसानों को देना चाहेंगे कि टिम्बर तो ठीक है, वो भी एक विकल्प है, लेकिन कई बार किसान इसलिए नहीं लगाना चाहते इमारती वृक्षों को क्योंकि उसमें कई साल लग जाते हैं, तो क्या कुछ और भी विकल्प हैं किसानों के पास?
2: नहीं, केवल टिम्बर नहीं है हमारा, इसके साथ फलदार वृक्ष लगाते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स भी है, बहुत सारे फॉडर है, क्योंकि आजकल जो लोग खेती के साथ साथ लाइफ स्टॉक, फिशरी, बाकी सारे कार्य भी करना चाहते हैं, अगर डायरी करने हैं तो उसके लिए भी आपको फॉडर चाहिए, तो बहुत सारे जो फॉडर प्लांट ट्रीज भी इसमें खेती लगाते हैं खेत में, वो सारे और बहुत सारे चीज जो फार्मर जो पहले बाड़ी के कंसेप्ट में जो बाड़ी प्रोटेक्ट करने के लिए चारों तरफ लगाते थे वो पेड़, वो भी आजकल हम प्रमोट कर रहे हैं
3: जी। मैं यहाँ एक इंटरप्ट करके एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा। एक राजस्थान में एक पेड़ है खेजड़ी।
1: अच्छा।
3: खेजड़ी का पेड़ जो है वो आपका उसकी इतनी ज्यादा उपयोगिता सेमी एरिड जोन में है कि अगर आप 400 पेड़ प्रति हेक्टेयर करीब करीब उसमें लगाया जाता है, और खेजड़ी मल्टीपर्पज ट्री है।
1: अच्छा।
3: एक तरफ वो जमीन के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करता है, दूसरी तरफ वो जैसे बड़ा होता है 3-4 साल का, उससे फॉडर बहुत बढ़िया होता है। एक पेड़ बताते हैं वहां के लोग कि प्रति वर्ष लॉपिंग करने के लिए, मतलब सिर्फ चारा काटने के लिए 400 रुपए में बिकता है।
1: अच्छा।
3: तो 400 × 400 ये तो सीधा पेड़ की सिर्फ डगाल काट कर उसको मिल गए। उसके अलावा उसके जो पॉड होते हैं वो वहां की सब्जी में एक डेलिकेसी मानी जाती है, और दिल्ली के बाजार में एक सांसद महोदय बता रहे थे एक पार्लियामेंट्री कमेटी में कि दिल्ली के बाजार में वो पॉड 300 रुपए किलो बिकता है।
1: जी।
3: तो ये जो है, और अगर आप देखें सेमी एरिड एरियाज में कहीं भी अक्रॉस द वर्ल्ड, तो जो मेन लाइवलीहुड का सोर्स है वो आपका पैस्टोरल है, छोटे स्मॉल रूमिनेंट जैसे बकरी भेड़ इत्यादि पालते हैं, उनके लिए चारा। तो उस तरह तो वृक्ष जो है न सिर्फ आपके भूमि की उर्वरता को बढ़ा रहे हैं, आपको लगातार इनकम दे रहे हैं। तो इस तरह के मॉडल्स को हमें आगे बढ़ाने की बड़े पैमाने पर आवश्यकता है।
1: रिजवी जी, यहाँ पे कुछ सजेशन, कुछ सुझाव आप भी देना चाहेंगे किसानों को कि वो किस तरह के पेड़ लगाएं कि ताकि उनकी जो आय है वो और बेहतर हो जाए?
0: जो पेड़ लगाने का मसला है ये बहुत लोकल है
1: जी।
0: कोई जनरल
1: और जलवायु सब चीजों
0: कोई जनरल प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया जा सकता। इसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो किसान क्या चाहता है, तो अगर उसको फलों की जरूरत है तो हम उसको टिम्बर नहीं लगवा सकते, चाहे वहां पे कितनी अच्छी भी मार्केट हो। तो एक तो जो जरूरत है लोकल वो हमें देखना होगा, दूसरे ये देखना होगा कि वहां की जलवायु क्या है। अगर हम किसी ऐसी जगह पे जहां पानी कम होता है ऐसे पेड़ लगवाएं जिसको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। और तीसरी चीज ये है जैसा कि रत साहब ने कहा कि मिट्टी किस तरह की है, तो ये तीन चार फैक्टर्स हैं जिनको देख के उसके बाद डिसाइड किया जाता है। और अभी कृषि वानिकी की बहुत पुराना कला है
1: जी।
0: और अब उसमें साइंस मिलाई जा रही है, तो ये वही चीजें हैं जिसको कि सारी चीजों की एनालिसिस करके और एक सिस्टम हम लोग डेवलप करते हैं जिसमें ये ना हो जो आपने कहा कि भाई चार साल वेट करना पड़ता है, तो पहले ही साल में पहले छह महीनों से किसान को आमदनी हो और वो पेड़ से आए या वो कृषि से आए
1: जी।
0: लेकिन आमदनी उसकी होनी चाहिए। और एक बात सिन्हा साहब ने खेजरी के बारे में कही
1: जी।
0: तो मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूँ कि ये एक ऐसा पेड़ है कि जितनी गर्मी पड़ती है उतना ज्यादा हरा होता है ये।
1: अच्छा बिल्कुल, तो ऐसे कई पेड़ हैं हमारे देश में जिनकी अपनी कई सारी खूबियां हैं, बस उन्हें थोड़ा सा तलाश कीजिए, वो अपने आसपास ही आपको मिल जाएंगे और देखिए कि किस तरह से उससे लाभ आपको मिलता है और कई तरह के फायदे हैं अगर आप खेती के साथ साथ पेड़ भी लगाते हैं। तो चर्चा में और आगे बढ़ती हूँ, और सिन्हा जी आपने बात की थी चर्चा के दौरान किस तरह से जो नियम कायदे हैं वो भी है जो कभी कभी अड़चन बन जाते हैं। नीति आयोग ने कृषि सुधार सूचकांक जारी किया है, उसमें एक फैक्टर किसानों को अपने पेड़ बेचने के लिए आजादी भी है। तो ये बताएं कि ये जो अड़ंगे आते हैं पेड़ बेचने के सामने, तो नियम कानूनों में बदलाव के लिए राज्य सरकारें इस दिशा में क्या कर रही हैं?
3: नहीं देखिए, सभी कोई भी नियम कानून बनता है, सरकार जब भी कोई नियम कायदा कानून लाती है तो उसका कोई ना कोई परिप्रेक्ष्य होता है। वो परिप्रेक्ष्य समय के साथ कालांतर में बदलते रहते हैं।
1: ठीक है,
3: तो आज की जिस समय ये नियम कायदा कानून बनाए गए थे संभवतः उस समय इनकी आवश्यकता रही होगी, लेकिन आज के बदलते हुए परिवेश में जहां की हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जहां हम ओपननेस की बात कर रहे हैं, तो संभवतः हमें अपने नियम कायदा कानूनों में देखने की आवश्यकता है फिर से। और इसमें केंद्र सरकार लगातार राज्यों से बात कर रही है, जैसे मैंने पहले ही बताया कई राज्यों ने रिलैक्स किए हैं, कई राज्य इसमें आगे बढ़े हुए हैं, कुछ राज्यों में अभी रिलक्टेंस है, उनको उनके साथ हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये कृषि जो मुद्दा है अगर हम संविधान को देखें तो संविधान के तहत वो जो है राज्य क्षेत्र का मुद्दा है
1: जी।
3: तो राज्यों के साथ सहमति बनाकर ही हम उसमें कहीं आगे बढ़ सकते हैं। और इवन आपका जो ट्रांजिट रेगुलेशन वगैरह जो है, ये फॉरेस्ट एक्ट वो सेंट्रल एक्ट है
1: जी।
3: लेकिन उसमें यह अधिकार राज्यों को दिया गया है कि वो राज्य बनाए कि वो किस किस को फ्री करेंगे किसको नहीं फ्री करेंगे। तो जब तक एक सहमति तैयार करके हम आगे नहीं बढ़ते हैं, और जब तक सहमति जब तक नहीं बनेगी तब तक सभी एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे नहीं।
1: बिल्कुल, तो जो लेकिन ये अच्छी बात है कि कुछ राज्य हैं जो इस दिशा में आगे आ रहे हैं और उन्होंने कई सारी छूट जो है वो किसानों को दी है, किसानों के हितों में फैसले लिए जा रहे हैं। बहरहाल इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा बात संवाद।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: लाखों लोगों को रोजगार देने वाली लकड़ी आधारित 26,000 औद्योगिक इकाइयां आयातित कच्चे माल पर निर्भर करती है। अरबों की विदेशी मुद्रा आयात पर खर्च करनी पड़ती है। लोगों का न केवल रोजगार बचाने बल्कि रोजगार के नए अवसर पैदा करने और विदेशी मुद्रा बचाने का एक ही जवाब है कृषि वानिकी। इस पर चर्चा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।

0: में 26,000 औद्योगिक इकाइयां लकड़ी पर आधारित हैं। ये इकाइयां लाखों लोगों को रोजगार दे रही हैं। घरेलू बाजार इनकी कच्चा माल मांग पूरी नहीं कर पाता, इसलिए लकड़ी आयात करनी पड़ती है। पिछले साल 48,000 करोड़ रुपए की लकड़ी आयात की गई। कृषि वानिकी में उन पेड़ों को लगाने पर जोर दिया जा रहा है जिनसे इन इकाइयों की कच्चे माल की भारी मांग पूरी हो सके और आयात का मोटा बिल कम कर अरबों की विदेशी मुद्रा बचाई जा सके। 10 राज्यों के 26 जिलों में एक अध्ययन किया गया है जिसमें पता लगा है कि प्रति हेक्टेयर औसतन 18 वृक्ष हैं। पंजाब में 217 वृक्ष प्रति हेक्टेयर तक पाए गए हैं। इस हिसाब से 18 का औसत बहुत कम है। इमारती लकड़ी के पेड़ कृषि वानिकी में कम लोकप्रिय हैं, क्योंकि इनसे आमदनी लेने में किसान को बड़ा लंबा समय लगता है। सागौन के पेड़ पर शोध के बाद वैज्ञानिकों ने जो किस्म तैयार की है उसे भी 25 साल लग जाते हैं। किसान इतनी लंबी प्रतीक्षा नहीं कर सकता, उसे जल्दी आमदनी देने वाले पेड़ चाहिए। इस नजरिए से किसानों में यूकेलिप्टस और पॉपुलर के पेड़ ज्यादा लोकप्रिय हैं, लेकिन पिछले 3 साल में दामों में भारी गिरावट के कारण किसानों का पॉपुलर के प्रति रुझान कम हो रहा है। हालांकि विशेषज्ञ इस गिरावट को अस्थायी मान रहे हैं। उनका मानना है कि 2004 से 2006 तक ऐसी ही गिरावट आई थी, उसके बाद किसानों को फिर अच्छे दाम मिलने लगे।
1: आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रिजवी जी, 26,000 औद्योगिक इकाइयां और 48,000 करोड़ रुपए की लकड़ी का आयात, ये आंकड़े क्या बताते हैं?
2: ये एक तरह से सीधी तरह से दर्शा रहे हैं कि कृषि वानिकी को और इंटेंसिटी के साथ करने की जरूरत है। और जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया कि जो इमारती लकड़ी है वो चूंकि काफी लंबा टाइम लगता है और उसकी वजह से किसान उसमें उतना इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तो उसके लिए भी काम हो रहा है और बायोटेक्नोलॉजी और जीनोमिक्स को यूज करके एक गेहूं या चावल की एक नई वैरायटी लाने में 9 से 10 साल अगर आप ट्रेडिशनल ब्रीडिंग करें तो लगता है, लेकिन पेड़ की नई वैरायटी लाने में 20 से 30 साल लग जाते हैं। तो वैज्ञानिकों के सामने भी वो एक चैलेंज है कि किसानों को वेट करना पड़ता है और इधर वैज्ञानिकों को भी वेट करना पड़ता है। लेकिन अब बायोटेक्नोलॉजी और जीनोमिक्स को यूज करके जो काम पहले 30 साल में होता था वो अब 10 से 11 साल में हो सकता है। और ये एक ऐसा विषय है जिसमें वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री सेंटर और भारत सरकार के जो शोध संस्थान है उसमें हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और डिमांड को देखते हुए ये बिल्कुल साफ है कि एग्रो फॉरेस्ट्री की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि सिन्हा साहब इस पे कुछ प्रकाश डालेंगे कि ये जो दाम घट रहे हैं वो क्यों घट रहे हैं, और उसमें भी थोड़ा सा शायद नीति बदलने की जरूरत है या कुछ नए कानून कुछ बनाने की जरूरत है।
1: ये जवाब लेते हैं सिन्हा जी से। और जैसा कि सौजन्य जिन्हें भी ये चर्चा के दौरान बताया कि किस तरह से जो पॉपुलर है उसके दाम में भी भारी गिरावट हुई है पिछले दिनों, तो सिन्हा जी ये तो बताएं ही हमें, साथ ही ये भी बताएं कि ये जो अप्रत्याशित गिरावट है उससे किसानों को सुरक्षा देने के लिए और उत्पादन लागत कम करने के लिए भी क्या कोई इंश्योरेंस या सब्सिडी या इस तरह की कुछ योजना है क्या सरकार के पास?
3: नहीं, ये अभी जो प्राइसेस क्रैश हुए हैं इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि अगर हम देखें तो पैसा, सभी लोग मानते हैं कि हमारे देश में लगातार फॉरेस्ट के ऊपर अनावश्यक प्रेशर था, कई जगह इलिसिट फिलिंग वगैरह काफी ज्यादा थी और फॉरेस्ट डाइवर्शन हो रहे थे। सब चीजों को देखते हुए जो लकड़ी का कहीं ना कहीं डिमांड था
1: जी।
3: तो उसको और लकड़ी जो है कन्वर्ट होती है सॉ मिल्स में, तो 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीका से एक बंदिश ही लगा दिया कि 1996 से लेकर अभी तक जो कैपेसिटी है वो उतनी बढ़ी नहीं। और हुआ ये कि बीच में बहुत बड़े एरिया में किसानों ने, खास करके वेस्टर्न यूपी, आपका पंजाब हरियाणा में पेड़ लगाए। अब उनका जो कैपेसिटी है सोइंग की वो बढ़ी नहीं है, बढ़ी नहीं और सप्लाई बढ़ गया, पेड़ मैच्योर हो गए, तो नेचुरली ये डिमांड सप्लाई के कारण प्राइसेज में गिरावट इधर आई है। बट एक ये खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर अब जो एक भी सॉमिल खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता था, उस चीज को थोड़ा भी रिलैक्स करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट को यह डायरेक्शन दिया था कि वो एक गाइडलाइन जारी करे जिसमें अधिकार राज्यों को नए सॉमिल एस्टैब्लिश करने के लिए दे दिए जाए। भारत सरकार की कृषि ये पर्यावरण मंत्रालय ने इस संबंध में एक दिशा निर्देश राज्यों को जारी भी किया है, ये अभी कुछ दिन पहले ही जारी हुआ है। उसको क्या उससे मुझे उम्मीद है कुछ नए नए जो बंदिशें थी वो बंदिशें थोड़ी कम होगी, नए इंडस्ट्रीज आने शुरू होंगे, जैसे जैसे नए इंडस्ट्रीज आएंगे तो लकड़ी का जो है जो अभी डिमांड कैपेसिटी कारण जो बॉटलनेक था वो दूर होगा और फिर से प्राइसेस अपवर्ड लेंगे। दूसरी चीज ये है कि हमारा मंत्रालय जो वो गाइडलाइन जारी किया है उसका भी परीक्षण कर रहा है, और अगर हम उसमें पाएंगे कहीं भी कि ऐसी कोई विसंगति है जो कि इंडस्ट्री को आगे बढ़ने में प्रॉब्लम करेगा तो हम अपनी मंत्रालय से इस बात को लेकर के पर्यावरण मंत्रालय से चर्चा करेंगे और उसको और रिलैक्स कराने की कोशिश करेंगे।
1: बिल्कुल, तो ये जो डिमांड एंड सप्लाई का अर्थशास्त्र है वो तो है ही, वो बाजार के साथ लगा ही रहेगा, तो ऐसे में किसानों को ये उचित भाव मिले इसके लिए क्या कुछ और करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं?
3: नहीं, अभी किसानों को सबसे पहले तो जो बाहर से इम्पोर्ट ज्यादा है तो हम लोग अपनी मंत्रालय की ओर से ये भी सोच रहे हैं कि वाणिज्य मंत्रालय को हम अप्रोच करें कि जो टैरिफ है
1: जी
3: उसको इम्पोर्टेड टिम्बर पे टैरिफ को बढ़ाया जाए ताकि इम्पोर्ट थोड़ा कॉस्टली हो और हमारा जो है प्रोडक्शन जो है वो उसके इजीली वो बिक सके लोकल मार्केट में। तो इसमें एक तरफ तो मतलब दो तीन इश्यूज हो सकते हैं जिनको एग्जामिन करना पड़ेगा इसके पहले कोई निर्णय हो। बाहर से इम्पोर्ट क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है, इतना सस्ता कैसे है, और अगर क्या क्वालिटी का कोई इश्यू है क्या, जहां खपत पॉइंट है वहां क्वालिटी का अगर इश्यू है तो उस तरह के पहले हमें प्लांट लाने लगवान कम से कम उस तरह की क्वालिटी का प्लांटिंग मटेरियल हमें पैदा करना पड़ेगा
1: जी,
3: तब जाके ताकि वो इंडस्ट्री जो ऑलरेडी चल रही है उस इंडस्ट्री को मतलब हम बंद नहीं कर दें,
1: ठीक है, उसको सहारा दे सके। रज जी ये बताएं कि कृषि वानिकी में प्रति हेक्टेयर औसत 18 वृक्ष है, पंजाब में 217 वृक्ष प्रति हेक्टेयर तक है और इस हिसाब से औसत जो है वो बहुत कम है, तो 1983 में इस दिशा में अनुसंधान हो रहे हैं और फिर भी ये इतना कम क्यों है?
4: प्लांटिंग इंटेंसिटी जो है हमारा जो 625 सब हाई इंटेंसिटी प्लांटेशन है, 625 पेड़ जो है वो तो होता है जहां ओनली प्लांटेशन करना है, हमारा लक्ष्य वो नहीं है। हमारा लक्ष्य है जो कृषि के साथ साथ, क्योंकि हमारा किसान का लैंड बहुत छोटा है वो बहुत ज्यादा प्लांटेशन कर नहीं सकता है, वो छोटा फार्म के अंदर उसका पेरीफेरी में प्लांट करना है, कोई इंटरमीडिएट प्लांटेशन करना है, तो हमारा लक्ष्य कि ज्यादा रेट ऑफ प्लांटेशन या इंटेंसिटी बढ़ाना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है कृषि के साथ साथ वो जो उसका जो क्रॉप वगैरह लेता है उसमें कोई विघ्न ना आए, उसका एरिया प्लांटेशन वगैरह कुछ कम ना हो, क्रॉप जैसा वो कर रहा था वो करे, उसके साथ साथ पेड़ लगा के उसमें उसका कुछ अतिरिक्त इनकम हो और वो सस्टेनेबल भी हो, यहीं कहीं जैसे मैंने पहले बताया था उसका कोई क्रॉप वगैरह फेल हो जाता है तो उसको कुछ अतिरिक्त इनकम फल से फलाधार वृक्ष से मिले या जो फडर के जरिए उसका जो डायरी है छोटा पोल्ट्री यूनिट वगैरह जो करेंगे उसके कुछ इनकम मिले, ये सब सहायक होगा।
1: जी जी जी सौजन्य जी आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपने इतने दिनों में कृषि वानिकी में जो कुछ भी हो रहा है और जमीनी स्तर पर जो हो रहा है उसे देखते हुए क्या पाया है, किस तरह की समस्याएं किसानों के सामने आ रही है और पर्यावरण की दृष्टि से भी हमें बताएं कि क्या कुछ अंतर भी पड़ा है?
5: पर्यावरण की दृष्टि से तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कृषि वानिकी भी अगर हम देखें तो हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि एग्रोफॉरेस्ट इज नॉट द नेचुरल फॉरेस्ट, मतलब वो प्राकृतिक वन नहीं है, तो इकोसिस्टम सर्विस जिसे कहते हैं जो प्रकृति खुद से देती है उसमें फर्क तो आता है।
1: अच्छा।
5: दूसरी बात ये भी है कि किस किस्म के पौधे लगाए जाए, जैसे कि रिजि सर ने कहा कि ये कृषि वानिकी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम टिम्बर प्रोड्यूस करें, इसका मतलब ये भी है कि दूसरे फलदार पौधे कई किस्म के पौधे होने चाहिए, कई किस्म के पेड़ होने चाहिए, तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि एक लोकल जो इकोलॉजिकल सर्विसेज हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज हैं वो मेंटेन रहें, वो वैसी की वैसी बनी रहें।
1: बिल्कुल। और कार्यक्रम के इस अंतिम क्षणों में हम अपने चारों मेहमानों से बहुत ही संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि वे किसानों को क्या सलाह देना पसंद करेंगे। रिजवी जी, आपसे शुरू करना चाहूंगी।
2: किसानों से कुछ कहने से पहले मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि ये सवाल बार बार उठा कि कृषि वानिकी को कैसे हम और प्रमोट कर सकते हैं
1: जी।
2: और एक जो बात हमें लगती है और मुझे लगता है सभी लोग इससे सहमत होंगे कि जब किसान धान गेहूं उगाता है तो उसको लोन मिलता है, क्रॉप लोन, लेकिन कृषि वानिकी के लिए कोई लोन नहीं है और इसी तरह से कोई इंश्योरेंस भी नहीं है। तो अगर मैंने 4 बीघे में कृषि वानिकी कर दी और वो पेड़ खराब हो गए तो ना तो मेरे पास इंश्योरेंस है और ना मुझे कोई लोन मिला। तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिन्हा साहब से कि वो इसको देखें। और किसानों के लिए मैं

0: मैं बस इतना कहूंगा कि अगर वो कृषि वानिकी करेंगे तो किसी भी हालत में उनको नुकसान नहीं होगा, उनको फायदा होगा। और करने से पहले उनसे मेरी ये प्रार्थना है कि उनके घर के आसपास अगर कोई कृषि विश्वविद्यालय है, अगर कोई केवीके है, अगर कोई गवर्नमेंट का संस्थान है, तो वहाँ के जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे बात करके पेड़ों का चुनाव करें और कौन सा पेड़ कहाँ लगाना है वो उनसे जरूर बात करें।
1: रथ जी,
2: जैसे मैं पहले बताया, हमारा जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, छोट कृषि फार्म साइज इतना छोटा छोटा हो रहा है, तो उसमें एक्चुअली डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर का बहुत जरूरी है। इसीलिए कृषि को अगर वो क्रॉपिंग सिस्टम को डाइवर्सिफाई करना है तो कृषि वानिकी का बहुत सहयोग है, उसमें बहुत स्कोप है। उसमें उनका इनकम भी बढ़ेगा, सॉयल का ये भी बढ़ेगा, इकोलॉजी का इम्प्रूवमेंट होगा। तो हम आग्रह करते हैं कि हमारा किसान भाई हो, जहां जहां उनको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उनको उन्होंने पेड़ लगा है, और अपना समृद्धि के साथ साथ देश का समृद्धि और हमारे एनवायरमेंट का उन्नति करने के लिए सहायक।
1: सौजन्य जी, क्या कहना चाहेंगे आप?
3: मेरा ख्याल है कि विलेज लेवल पे जो इंस्टीट्यूशंस है, जो संगठन है, उन्हें भी मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि एक हाथ अगर सरकार की तरफ से बढ़ रहा है तो एक हाथ किसान भाइयों और लोगों की तरफ से भी बढ़ना चाहिए, तभी दोनों हाथ मिलेंगे
1: जी।
3: तो इसमें संगठन अगर मजबूत होगा, किसानों का संगठन मजबूत होगा, तो उन्हें नए जानकारियां ज्यादा अच्छी तरह से उपलब्ध हो पाएंगी
1: जी।
3: और इससे फिर वो सही फैसले भी ले पाएंगे कृषि वानिकी के लिए क्या उपयुक्त है
1: जी। बिल्कुल जी, आखिर मैं आपसे जानना चाहूंगी, सरकारी प्रयास और किसानों का जो उत्साह है वो बढ़ाने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
4: हम तो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहेंगे, हमने कहीं पढ़ा था कि एक वृक्ष 10 पुत्र समान
1: जी,
4: ठीक है, तो वृक्षों को उसी दृष्टि से देखें और ये आगे बढ़ के आए, दो कदम किसान चले, सरकार 4 कदम हमें साथ आगे आने को तैयार है, और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के हमारी प्रतिबद्धता है कि उनकी इनकम को हम डबल करें और उसमें कृषि वानिकी एक अहम भूमिका अदा करे, ये देखना हमारा मिशन डायरेक्टर के रूप में एक दायित्व है जिसको हम अपनी तरफ से किसानों को पूरा करने का वचन देते हैं।
1: बहुत बढ़िया, और विश्वास है कि किसान पेड़ों से मिलने वाले पैसे और उसकी इच्छाओं से होने वाली पर्यावरण की रक्षा को कुछ और समझे होंगे। कृषि वानिकी के कई पहलुओं पर हमने चर्चा की है।
5: किसान भाई, हम आशा करिए कि आज ना कार्यक्रम में तमें घनी महत्वपूर्ण जानकारी ने जानी है, केम के आप घना खरा किसान भाई एवं है कि अपन खेतरों में जहाँ झाड़ू है तेना वाटी दिए हैं, पर इना झाड़ू नो भी घणो फायदो है, तो अलग अलग प्रकार ना झाड़ू नी खेती करीन भी अपन जो किसान है वो अधिक थी अधिक मुनाफो ली सके है। इनती जोड़ेली हजू भी आपू चर्चा करूँ, पर आज ना इना दन हरू बस इतरूस, केम के हमने समय थी गयो है आ तमारथी विदा लेवानो, तमारथी फेर काल मुलाकात थाय इना समय पर, ता तक बनेला रहेजो हमारी हाथे रेडियो 90.8 FM नी हाथे।

0: कुछ कहानियाँ किताबों में लिखी जाती हैं और कुछ लोगों के चेहरों, उनकी मुस्कुराहटों और उनके संघर्षों में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। दोस्तों, ये वो महफिल है जहाँ गीत सिर्फ बजते नहीं, जिंदगी के पन्ने खुलते हैं। यहाँ हम उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने सपने सिर्फ देखे नहीं, ठोकरें खाई, हौसले संभाले और अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो आइए आज फिर एक जिंदगी से मिलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, एक कहानी सुनते हैं और गीतों के साथ महसूस करते हैं जिंदगी अनप्लग्ड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड। कुछ लोग अपनी जिंदगी को प्लान करते हैं और कुछ लोग जिंदगी के साथ बहते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। आज की हमारी मेहमान उन्हीं लोगों में से एक हैं, एक न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामर, ऑथर, पोएट, पॉडकास्टर, स्टेज परफॉर्मर और सबसे बढ़कर एक ऐसी इंसान जो मानती हैं कि सबसे पहले इंसान बनना जरूरी है, बाकी पहचान तो बन ही जाती है। 21 इयर्स का सफर, अनेक अनुभव। उनकी कहानी सिर्फ करियर की कहानी नहीं है, बल्कि खुद को समझने, बदलने और हर बार रीइन्वेंट करने की कहानी है। तो आइए बहुत प्यार के साथ स्वागत करते हैं ईशा जैन जी का। तो ईशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी अनप्लग प्रोग्राम में। कैसा महसूस कर रहे हैं आप?
1: बहुत अच्छा। बहुत समय बाद किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ने का मौका मिला है जहाँ पे खुल के बोलने की आजादी और खुद को एक्सप्रेस करने की आजादी मिली है
0: जी।
1: तो अच्छा लग रहा है।
0: बिल्कुल, हम भी बहुत एक्साइटेड हैं, और क्योंकि हम जानते हैं कि आप खुद एक पॉडकास्टर रहे हैं, स्टेज परफॉर्मर रहे हैं, तो आई कांट वेट टू स्टार्ट दिस एपिसोड। मैम, सबसे पहले हम आपको बचपन में ले जाएंगे। आपने बताया कि आपके जीवन में, प्रोफेशनल सफर में, बचपन में ऐसे बहुत सारे मोड़ आए जहां पे आपको अगर डायरेक्शन के लिए किसी को देखना था तो आपके पास आपके पेरेंट्स थे, वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थे। तो जब आप कभी डायरेक्शनलेस फील करते हो या कभी ऐसी चीजें हुई लाइफ में जहां आपको लगा कि अब कहां जाऊं, तो बियॉन्ड योर पेरेंट्स आप किस चीज पे डिपेंड करते हो? क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो, तो क्या आप प्योरली इंट्यूशन से चलते हो या लॉजिक से चलते हो? हाउ डू यू डिसाइड योर डायरेक्शंस इन लाइफ इफ नॉट फॉर योर पेरेंट्स? आप क्या करते हो?
1: मैं बस साधारण शब्दों में ये कहूंगी कि जो जिंदगी में सिखाया, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और जैसे जैसे जिंदगी में जो जो सिखाया उसको याद किया कि तब क्या किया था, कैसा महसूस हुआ था। अब एक होता है, हम एक सोचते हैं ना कि हमने अगर कुछ चीज जीती है तो हम उसको किस तरीके से, हमने उसमें उस समय पे हमारी कंडीशन क्या थी, हमारा माइंडसेट क्या था। तो अगर तब वो चीज हो सकती है तो अब कोई नई चीज हमें सीखने को मिल रही है, नया एक कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, क्योंकि मेरे पापा ने एक चीज कही थी, दो चीज, कि तुम अपनी लाइफ में हमेशा एक लर्नर रहोगी तो उस चीज को कभी मत छोड़ना, और अपनी लाइफ में तुम अपने आप को सबसे ज्यादा वैल्यू करोगे तो उसको मत छोड़ना। तो ये दो बातें हैं, और अपना इंट्यूशन और जो चीज हो रही है उसके पीछे लॉजिक को खूब अच्छे से ऑब्जर्व करके और समझ के मैं आगे बढ़ती हूँ। ये मेरा तरीका है।
0: राइट। कभी कोई ऐसा वाक्या अगर जहन में आ रहा हो कि आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, उस टाइम सच में आपने अपने लॉजिक और अपनी इंट्यूटिव एनर्जीज को टैप किया एंड कुछ डिसाइड किया, कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट या कोई ऐसा इंस्टेंस?
1: 2017 में ऐसा हुआ था कि 2016 में मैं जब एक योगा ट्रेनर नई नई बनी थी, तो उस समय मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रही थी कुछ महीनों के बाद, क्योंकि मुझे बाहर ऋषिकेश जाना था, लेकिन कभी कुछ हो रहा था, कभी बजट नहीं बैठ रहा, कभी कुछ कभी कुछ। तो मेरी मम्मी ने मुझे आके एक ही चीज बोली कि तुझे पास ना चले जाए, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे तुझे सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। और 2017 जनवरी में मैंने मेरा जो विपश्यना का कोर्स किया, मतलब मेरा सेकंड कोर्स था वो 10 दिन का, मैंने वो किया। और उसको वहां से आने के मतलब शायद 1-1.5 महीने के अंदर अंदर मैंने अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया था, कुछ महीनों के लिए ही सही, लेकिन वहां जो मेरे लिए एक जो हर्डल आ रहे थे या रुकावटें जो कह सकते हैं कि भाई फाइनेंशियली मेरा बैकअप नहीं मिल रहा या मुझे समझ नहीं आ रहा मैं नेक्स्ट स्टेप कैसे लूं, तो उस बिजनेस में छोटे से थोड़े समय के उस परफ्यूम के बिजनेस में मुझे एक नया रास्ता दिखा दिया। और 2017 सितंबर में मैं ऋषिकेश नगर गई थी, जहाँ पे मैं 4 महीने के लिए वहां पे थी, मेरी योगा प्रैक्टिस कर रही थी, मेरा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कर रही थी, मतलब मैंने 2-3 टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कर। तो ये एक इंसिडेंट है जो मैंने मेरी लाइफ में जिया है।
0: अमेजिंग।
1: मेरी मम्मी अगेन, जैसा मैंने कहा मेरे मम्मी पापा, तो अगेन मेरी माँ मेरा पिलर बनी थी ओवरऑल एक्सपीरियंस में, इंसिडेंट में, एंड आई ऑलवेज हैव दैट। मेरे हमेशा मन से एक दुआ निकलती है उनके लिए, एक शुक्रिया निकलता है उनके लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आई कैन इमेजिन, मदर्स सच में पिलर्स होते हैं। एंड जो आपने इंस्टेंस शेयर किया उससे हम ये समझते हैं कि कई बार पॉज लेना कितना जरूरी है। जब नॉइज कट आउट होती है आपके जीवन से, तब आपको क्लैरिटी अपने आप मिल जाती है और रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत आपने वाक्य हमारे साथ साझा किया ईशा मैम। आगे चलते हैं इसी से आपके करियर की तरफ। जैसे आपने बताया कि 21 ईयर्स का लॉन्ग करियर स्पैन रहा है आपका, एंड 13 न्यू रोल्स आपने अलग अलग निभाए इन 21 ईयर्स के स्पैन में। तो अगर ये बहुत आई थिंक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, मेरे को लगा आपका यू नो इंट्रोडक्शन पढ़ के और आपके बारे में पढ़ के कि इसको अगर मूवीज से जोड़ा जाए, अगर कोई टाइटल लिखना हो, एक मूवी पोस्टर लिखना हो, आपको सीवी नहीं बनाना हो, एक प्रोफेशनल सीवी नहीं, बट एक मूवी पोस्टर पर लिखना हो इस सफर को, तो वो क्या होगा और क्यों होगा?
1: उसके लिए तो मैं बस बहुत एक मन में जो इम्प्रॉम्प्टू टाइटल जो आ रहा है, तो यही बोलूंगी मेरी जिंदगी चारों दिशाओं में। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में हर कोई इंसान करता है, अपने अलग अलग जो एक्सपीरियंस होता है वो हर कोई जीता है, लेकिन मैंने मेरी जिंदगी में हर दिशा में इन 21 सालों में इतना कुछ एक्सपीरियंस करा है। और आपने मेरा पूरा वो चार्ट तो पढ़ा ही है
0: जी,
1: मैंने इतनी इतने सारे मैंने अलग अलग अलग अलग जॉनर्स में काम किया है। एकदम मतलब अपने आप में कोई अगर डांस स्टेज होस्टिंग से है, तो मैं कहीं टीचर भी रही हूँ, रिक्रूटमेंट भी करा है, ट्रैवल टूरिज्म एक अलग रहा है, सोलो ट्रैवलर रही हूँ, ब्लॉगर राइटर, मतलब हर एक दिशा को नापा है एक तरीके से। और हर जगह हर इंसान को हर किसी के एक थॉट प्रोसेस को जिया है, जिंदगी को देखा है, लोगों की कहानियों को सुना है, तो हम बस सीखते ही तो है ना पूरी जिंदगी में। तो मेरी जिंदगी चारों दिशाओं में इससे ज्यादा इस मोमेंट में मेरे को कुछ और समझ नहीं आ रहा टाइटल, बट हाँ ये तो जरूर है।
0: वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड सच में आपके जीवन में कई पड़ाव रहे और उन सभी पड़ावों से आपको जीवन का बहुत निचोड़ मिला होगा, जीवन सच में जिया गया ऐसा लगता है आपकी जर्नी को पढ़कर सुनकर। तो इसी यू नो खूबसूरत मोड़ पे, इसी प्यारी बात पे हम एक गीत सुनते हैं और मैं चाहूंगी कि आप अपनी पसंद का कोई सा गीत बताएं, तो हम उसे ही प्ले करेंगे आज।
1: मेरी पसंद का गीत, मैं ये गाना बहुत गाती हूँ, जो परिंदा मूवी का है, अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित का, तो वो गाना मेरे तरीके मतलब एक तरीके से बहुत करीब है. लेकिन अभी अगर आप अगर अपने दर्शकों को सुनाना चाहते हैं ना, तो ये गाना बहुत बहुत ज्यादा मैंने मेरे लिए लोगों ने या मैंने महसूस करा इस गाने को.
2: No.
1: तो क्यों मैं ये गाना बिल्कुल सुनना चाहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इस गाने को गाती भी हूँ, इसे रिलेट भी करती हूँ और शायद जिंदगी भी मेरे लिए गाना गाती हूँ.
2: बिल्कुल बिल्कुल, ये गाना सच में एक जिंदगी का फलसफे जैसा है और बहुत ही खूबसूरत गीत है, बहुत खूबसूरत फिल्म से है ये गीत. तो चलिए सुनते हैं हमारा आज का पहला गीत ईशा जी की पसंद से, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं, फिल्म मासूम.

0: क्या खूबसूरत गीत है ये। थैंक यू सो मच ईशा मैम फॉर दिस सॉन्ग। आगे चलते हैं। आपने बताया कि आप इंट्रोवर्टेड भी फील करते हैं और एक्सट्रोवर्टेड भी फील करते हैं। आप जब अपने फ्रेंड सर्कल में होते हैं, अपने जोन में होते हैं, तो आप बिल्कुल एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, अदरवाइज आप एक इंट्रोवर्ट हैं, तो बेसिकली एक एम्बीवर्ट हैं। तो कौन से ऐसे मोमेंट्स होते हैं लाइफ के जब आप अपने इस इस पुश एंड पुल से जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट एग्जिस्ट करते हैं, कब आप उनसे मिलते हैं, कब इन दोनों में आपस में लड़ाई होती है, क्या ये पुश एंड पुल की जर्नी होती है? ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी ऐसी ही हूं, तो मैं जानना चाहूंगी आप कैसे इससे डील करते हैं, इसमें बैलेंस पाते हैं और कभी कभी कंफ्यूज महसूस करते हैं अपने बारे में।
1: मैं कहूंगी कि मैं बहुत कंफ्यूज पहले बहुत रहती थी, पर जिंदगी के साथ समय के साथ जो कुछ फलसफों को जिया है तो सीखा ये है कि अब मैं पहले ना खामोशी से अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ। सारे इमोशंस मुझ में भी हैं, गुस्सा मुझे भी आता है, इरिटेशन मुझे भी होती है, बुरा मुझे भी लगता है, रोना मुझे भी आता है, हर तरीके से। लेकिन पहले मैं चुप सबको देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ, और फिर जहाँ लगता है कि वाकई में यहाँ अपनी बात को रखना चाहिए उस बात को मैं वहाँ रखती हूँ। ये तो हो गई बाहरी दुनिया के लिए, लेकिन जब अपनों पे आती है कोई बात तो कई बार ना कंफ्यूजन बहुत हो जाता है, ऐसा होता है कि क्या करा जाए क्या करा नहीं जाए, क्योंकि किसी को बस जाके कुछ कह देना मतलब नहीं है। उस बात के पीछे वाकई में उसका कुछ मतलब हो, उसका कोई लॉजिक बने ना, तो वो बात एक इंसान को शायद आज नहीं तो आने वाले कल में जरूर समझ आएगी। तो बस उस समय पे मैं अपने आप पहले ऑब्जर्व करती हूँ, और अगर मन में लगता है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ तो खुद को चुप कर लेती हूँ।

0: हूँ, बस खामोशी से उस चीज के हर एक तार को समझने की कोशिश करती हूँ और उसके बाद फिर उस बात के ऊपर बात रखती हूँ। तो मेरा तरीका यही है।
1: बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नुआंस्ड आंसर, और सच में एक ऑब्जर्वर की सोच है ये, तो बहुत ही खूबसूरत मैम। आगे चलते हैं। एनएलपी हमें सिखाता है, क्योंकि आप एनएलपी प्रैक्टिशनर खुद हैं, तो जैसे हमें पता है, हमें बताया गया है कि एनएलपी हमें बेसिकली ये सिखाता है कि हम अपनी सोच से, अपनी लैंग्वेज से अपनी रियलिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आप अगर आज अपनी 20 साल की वर्जन से मिले, आज से यू नो सम इयर्स बैक 20 इयर्स की ईशा से आप मिले, तो उससे कौन सा एक सेंटेंस कहना चाहेंगे जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है, फॉर गुड और फॉर बैड?
0: मैं एक बार के लिए एक सेंटेंस तो नहीं, बट हाँ कुछ शब्द जरूर कहूंगी कि अगर जिंदगी में वाकई में ग्रो करना है तो सबसे पहला एक अच्छे इंसान बनो। व्हाट यू एक्सपेक्ट, इंग्लिश में थोड़ा बोल रही हूँ कि जो आप दूसरों से, व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स, जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं वैसा इंसान खुद को बनाना भी सीखे। क्योंकि अगर आपको लगता है आपका मूड खराब है और आप गुस्सा करेंगे तो सामने वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए, तो सामने वाले को भी शायद ऐसा लगे कि यार मैं गुस्से में हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरा थॉट है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन सामने वाले को हो सकता है कोई शब्द, कुछ चीज बुरे लग जाए, हो सकता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि सामने वाला कैसा है।
1: बिल्कुल,
0: तो बस एक तो ये चीज की बी अ ह्यूमन फर्स्ट, एंड उसके बाद में कि बस यही बात कि जो हम किसी और से हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा इंसान हम खुद को बना लें, तो और चुप रहना सीख जाए।
1: बिल्कुल,
0: तो बस
1: बिल्कुल,
0: बी काइंड, बी ह्यूमन, चुप रहिए और एक्सपेक्टेशंस को पहले खुद में उतारिए, उसके बाद जिंदगी आपको ग्रो करेगी।
1: एब्सोल्युटली, जैसे कहते हैं कि डू नॉट डू अनटू अदर्स व्हाट यू डू नॉट वांट अदर्स टू डू अनटू यू। तो
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उस फलसफे पे, उस फिलोसफी पे जीने की कोशिश करिए। और ये बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही कि चुप रहना सीखिए, क्योंकि आज के जमाने में जहां ओपिनियंस की बाढ़ है और ओवरवेलमिंग तरीके से लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उसमें चुप रहना आई थिंक एक लग्जरी है। तो बहुत ही खूबसूरत एक एडवाइस है जो मैं SN रेडियो के पूरे सभी श्रोताओं से कहना चाहूंगी कि कई बार जरूरी नहीं है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपना ओपिनियन दें, कई बार सिर्फ चुप रहें, ऑब्जर्व करें और शायद सर नीचे करके उस सिचुएशन से निकल जाएं, क्योंकि उसमें आपके ओपिनियन की जरूरत नहीं है। तो इस बात को समझना, इस बहुत महीन सी लाइन को रिकॉग्नाइज करना और अपने जीवन में उतारना, ताकि आपके साथ साथ आपके आसपास वालों का जीवन भी थोड़ा सफल हो, बहुत जरूरी है। एंड इस शोर में हम थोड़ा सा शांति ऑब्जर्व कर सकते हैं कभी कभी। तो मैम, इसी एहसास के साथ मैं चाहूंगी आप एक और गीत की फरमाइश करें जो हम आज प्ले करेंगे।
0: आपने मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि मैं तो वो इंसान हूँ जो गानों के पीछे, मेरी सुबह ही उन्हीं से होती है, मेरी शाम, मेरी रात म्यूजिक के पीछे है, उसके बिना मेरा जिंदगी अधूरी सी लगती है।
1: बिल्कुल, आई कैन
0: तो एक इरफान खान के बहुत गाने हैं जो इरफान खान पे पिक्चराइज करे गए
1: जी,
0: और एक बेजुबा गाना जो पीकू मूवी का है, वो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सभी।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेजुबा
0: गाने का टाइटल ही ये है, बेजुबान।
1: बिल्कुल बेजुबा, बेजुबा फ्रॉम पीकू, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग्स इन द रीसेंट टाइम्स, एंड नॉट रीसेंट नाउ बट यस, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फिल्म्स एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, बेजुबा। चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत फ्रॉम द फिल्म पीकू।

0: वेलकम बैक ईशा जी।
1: थैंक
0: आगे चलते हैं। आपने एनजीओ के साथ भी काम किया और आपका हमेशा मोटो रहा है, जैसे आपने प्रीवियस आंसर में भी हमें बताया कि ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट, ह्यूमैनिटी इज फॉरमोस्ट फॉर यू इन योर लाइफ। तो आज के जमाने में, जिस वर्ल्ड में अगेन जहां हम रह रहे हैं, जहां सक्सेस एंड पावर और पोजीशन इतनी इम्पोर्टेंट है और इतनी पैरामाउंट है सबके लिए, ऐसी सिचुएशन में आपके हिसाब से इंसान कैसे सक्सेसफुल हो सकता है? कौन सा ऐसा इंसानी गुण है जो एक इंडिविजुअल को सीखना जरूरी है उस सक्सेस तक भी पहुंचने के लिए और ह्यूमैनिटी को भी इंटैक्ट रखने के लिए?
1: टाइमलेस,
0: ब्यूटिफुल
1: मन में टाइमलेस अगर हो,
0: ब्यूटिफुल
1: अगर कोई इंसान खुद को ऊंचा नीचा इस भेदभाव से निकाल देना कि हर इंसान दुख में सुख में सबके इमोशंस फीलिंग सब एक जैसे होते हैं, कोई अलग नहीं होता, बस हमारे देखने का नजरिया अलग होता है। अगर आपको प्यास लगती है, आपकी जैसी प्यास है सामने वाले की भी वही प्यास है। आपको भूख लगती है, आपके लगे तो आपको दुख होता है, दर्द होता है, तो सामने वाले की भी वही होता है। देखने का नजरिया है और एक्सप्रेस करने का नजरिया है। कि छोटी सी चोट में भी हम हाय हाय करेंगे या बहुत बड़ी चोट भी लगे तो हम बहुत एकदम आराम से शांति से भी उस चीज को हम कहते हैं ना कि झेलेंगे नहीं, लेकिन हाँ उस चीज के साथ हम समय के साथ उसको हील कर लेंगे। तो जब हम काइंड होते हैं ना, और एक इंसान को इंसान क्या, इंसान भी क्या, अगर जानवर भी हो, कोई भी बींग हो, उसको उसकी इमोशन फीलिंग काइंडनेस के साथ अगर हम देखें तो इससे ज्यादा इससे बेटर और कोई, मेरे हिसाब से और कुछ हो नहीं सकता।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और काइंडनेस सच में एक लॉस्ट ट्रेट है, एक लॉस्ट लग्जरी है अगेन आजकल। तो आई विश मोर एंड मोर पीपल काइंडनेस की तरफ जाएं और इस बात की इम्पोर्टेंस समझें, जैसे कि ईशा मैम ने बताया कि किस तरह से काइंडनेस आपको हेल्प कर सकती है अपने आप को समझने के लिए, सामने वाले को समझने के लिए, और जीवन को एक तरीके से मनूवर करने के लिए, एक मिडिल वे लेने के लिए जीवन में कई बार। तो आगे चलते हैं मैम। इसका सवाल, ये इस सवाल का जवाब पहले आप दे चुके हैं क्योंकि आपने बताया कि आप बहुत सिचुएशंस में एक ऑब्जर्वर की तरह सामने आते हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे आप पोएम्स भी लिखते हैं, पॉडकास्ट भी कर चुके हैं और स्पीकर हैं, राइटर हैं, हीलर हैं, बहुत सारे रोल्स आपने जीवन में निभाए हैं। अब आज की तारीख में अगर आप अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहें कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, तो आप इन सभी ट्रेट्स में से सबसे ज्यादा किससे रिलेट करते हैं अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन ऑब्जर्वर? वो आपका एक बेसिक ट्रेट है जो हम समझ चुके हैं। इन सब में से आपको सबसे ज्यादा रेजोनेट क्या करता है? विच रोल रियली टिक्स यू इन लाइफ?
1: मैं समझती हूँ कि एक हीलर के तौर पे मैं अपने आप को देखती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अंदर से जो फीलिंग आती है, एक अंदर से जो एक कि पहली चीज खुद को हील करना। क्योंकि जब मैं अकेली भी होती हूँ, मैं खामोश होती हूँ, मैं अपने आप को जीती हूँ, तो उस समय वो जो हम एनर्जी ड्रेन करते हैं ना, तो उस एनर्जी को रीगेन करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, तो अपने आप को वो उस मेडिटेटिव माइंडसेट में रखना, खुद को हील करना इज द बेस्ट थिंग टू डू। तो वो बेस्ट थिंग प्लस, हाँ मैं वैसी बन जाती हूँ, मुझे एफर्ट नहीं लगता। तो बस एज अ हीलर आई कैन से दैट आई एम दैट पर्सन।
0: अमेजिंग। बिकॉज यू हैव रिटन पोएट्रीज ऑल्सो और आई थिंक आप गाते भी हैं, बहुत खूबसूरत गाते हैं। तो अभी तो नहीं, टुवर्ड द एंड ऑफ द प्रोग्राम अगर आप अपनी लिखा हुआ, अपने लिखे हुए किसी एक ख्याल को पढ़ना चाहें हमारे साथ या कोई गीत गुनगुनाना चाहें हमारे लिए, तो हम बहुत आभारी होंगे आपके। टुवर्ड द एंड ऑफ द एपिसोड दैट इज। एंड अब फिर से हम एक गीत का ब्रेक लेंगे और मैं चाहूंगी कि आप अपनी पसंद का कोई एक गाना हमें बताएं तो हम आज उसे